0: समर्पण कर देते हैं, भाई तुमने हमारा इस सहयोग किया, जरूरत पड़े तो प्राण दे देंगे। गुरुदेव ने वो अलभ्य लाभ हरिवंश नाम, राधा वल्लभ नाम, राधा नाम, शरणागत मंत्र, निज मंत्र, आश्रय, छाती में बैठा लेना, ये छाती में बैठालना है, अपने हृदय अपने जीवन धन को दे दिया आपको। कितने तुम गंदे विचार वाले हो, देखो एक लोटा कोई पानी पिला दे उसको, जब देखेंगे तो नम्र आंखें हो जाएंगी। प्यास से व्याकुल था, एक बार इसने पानी पिलाया था। अनंत जन्मों से सुख और शांति के लिए ही मरते चले गए, आज तक जगह नहीं मिली। आज प्रभु की कृपा ने गुरुदेव रूप में आके मुझे स्वीकार किया और आनंद धाम की यात्रा करा रहे हैं। हम कैसे मलिन स्वभाव वाले, नीच स्वभाव वाले हैं कि उनकी आज्ञा का, उनके उपदेश का, उनके नाम का कोई महत्व हृदय में नहीं। हमारा तन, हमारा मन, बस हम जो चाहे कर सकते हैं। नहीं भाई, अगर तुम गुरुदेव के शासन में नहीं रहोगे तो काल तुम पे शासन करेगा, कर्म तुम पे शासन करेगा, फिर नष्ट हो जाओगे। अभी तुम कवच में हो तो सुरक्षित हो। याद कर लेना, पूरे जीवन में इसका अनुभव कर लेना, जहां कहीं गुरु आज्ञा का उल्लंघन करोगे वहीं फंस जाओगे, नष्ट हो जाओगे। अगर कृपा ना बचाए तो जीवन भर तुम दंड उसका भोगोगे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे। सदगुरुदेव भगवान कृपा करके तुम्हारे मन को निर्मल करते हैं। मन निर्मल करने में बड़ा श्रम लगता है, जैसे कपड़े में कोई दाग लगा हो तो धोने वाले को बड़ा श्रम लगता है, बार बार वहां रीठा लगा के मलना, धोना, पीट पीट के उस दोष को निकालना। ऐसे ही परम कृपालु गुरुदेव करते हमको शासन में लेकर, डांट कर, धुलार कर, ये हरि नहीं करते, ये हरि का कृपा रूप गुरुदेव करते हैं। सच्ची सच्ची गुरुदेव की कृपा ना हो तो परमार्थ का मार्ग ही ढका रहता है, मिलता ही नहीं है। चाहे जितना ज्ञान विज्ञान बगारो, वो अंतरात्मा में मार्ग प्रकाशित नहीं होता है। ये तो गुरु कृपा ही केवलम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। शरणागति का मतलब होता है कुम्हार की मिट्टी, सीधी भाषा में समझ लीजिए। आप कुम्हार की मिट्टी हैं, अब उस मिट्टी के साथ वो कुम्हार कैसा बर्ताव करता है सबको पता है। पहले एक मजबूत डंडा लेकर उसे कूटता है, कहीं भी इतना भी, अगर वो जरा सा सरसों जैसा भी कण रह गया तो वहीं से पात्र फूट जाएगा, वो रस लेने लायक नहीं रहेगा, उसमें रस नहीं रखा जा सकता, एकदम महीन। फिर पानी डाल के पैरों से गूंधता है, फिर हाथ में लेकर उसे बार बार गूंध के और मुलायम करता है, फिर चाक पे चढ़ाता है, जैसा चाहता है वैसा आकार दे देता है। यह है शरणागति। थोड़ा भी अहंकार रह गया तो वहीं से भागवतिक रस बह जाएगा, और यहां थोड़ा सा क्या, पूरा चलनी है, चलनी में गैया दू है और दोष दयु को दे। गुरु रीठा मन मैल मिटावे, उज्जवल कर दे धोए। धोने दो चुपचाप, हल्ला मत मचाओ, सारे दाग धुल जाएंगे शांति से, जैसी आज्ञा शास्त्र करता है गुरुदेव। शास्त्र को तुम क्या समझोगे, तुम्हारी भाषा में गुरुदेव तुम्हें बोल रहे, समझ में नहीं आ रहा तो दैवी भाषा शास्त्र को तुम समझ जाओगे, नहीं समझोगे। जो गुरु के वचनों पर प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा कर देता है उसके जीवन में प्रश्न ही प्रश्न रहते हैं, समाधान करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती है। मान लीजिए बहुत बढ़िया अवसर है, होली खेल लीजिए, होली अब रंग भर से। रंग कब रिश्ता है? होली, हम प्रियालाल के होली कहते हैं, प्रियालाल के होली, अपने अहंकार के, अपने देह के, देह संबंधों के, भोगों के, अभी प्रियालाल के कहां हो? तो कारंग बरस रहा है काम क्रोध का, ईर्ष्या द्वेष का, मान अपमान का। अगर श्यामा श्याम की होली तो फिर नयो नेह नव रंग नयो रस ये बरसेगा। आए तो इसी में भींजने के लिए हो वृंदावन, प्यारी जू प्यारे जू के ऐसा प्रेम रंग, फिर आप दूसरा रंग न चढ़े। बोले जे ही गुरुदेव मन को निर्मल किए, तब तह धरे श्याम चरणाम्बुज छुवत न मैलो होए। आ निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। महाराज तुम मांग कर रहे हैं, महाराज मांग कर रहे हैं, मुझे निर्मल मन पसंद है, मुझे छल कपट पसंद नहीं। गुरुदेव मांग नहीं कर रहे हैं। देखो गुरुदेव की हरि से भी बढ़कर उदारता, हरि तो कह रहे हैं मोहि कपट छल छिद्र न भावा, और गुरुदेव किसको ले रहे? जो कपटी है, छली है, दोषों से युक्त है, उसे गले में लगा करके हरि के लायक बना रहे। कैसे? बोले मन मैल मिटावे उज्जवल कर दे धोए, जो हरि को चाहिए वो गुरुदेव रूप से कर रहे। इसीलिए गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, तो गोविंद ने ही बता दिया बलिहारी गुरु आपने, बलिहार करो अपने गुरुदेव की, जिन्होंने मेरे से मिला दिया। नहीं, मेरे से मिलना साधारण बात नहीं, क्योंकि मुझे चाहिए निर्मल मन और मन है तुम्हारा मलिन, कैसे पा सकते थे? गुरुदेव ने मन के मैल को छुड़ा दिया। अब मैल छुड़ाने में श्रम लगता है, उस कपड़े को बार बार रगड़ा जाता है, पीटा जाता है, वो तब निर्मल होता है। ऐसे पिटाई होगी आपकी, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर एक दाग थोड़ी है, बहुत दाग है। पिटाई का तात्पर्य है वचनों का आपके ऊपर शासन, वचन का शासन। वचन आधीन सदा रहे रूप समुद्र गाद, प्राण रवन सो कत करत बिनु आगस अपराध। लाल जू महाराज हमारी महारानी जू के कैसे अधीन है? वचन आधीन सदा रहे। लाडली जू का शब्द और अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी का सिर झुकाकर स्वीकार करना, यह है प्रेम संबंध। वचन आधीन सदा है। त्रिभुवन के जितने भी बड़े बड़े महात्मा ऋषि सब हुए हैं, इन्हीं लालजू महाराज के चरणों की रज से हुए हैं, इन्हीं चरणों का आश्रय लिया है। तो हमारे लालजू महाराज हमारी प्यारी जू के कैसे, इसीलिए हम रस चर्चा करने में घबराते हैं कि मलिन बुद्धि जब नाम नहीं जप पा रहे, सिद्धांत से नहीं चल पा रहे, तो प्यारी जू की लीलाओं में तुम्हारी क्या बुद्धि होगी? पहले सिद्धांत पुष्ट कर लो, पहले देह भाव से मुक्त हो तो रस भाव में तुम्हारा प्रवेश हो। प्यारी जू की रसमय लीला में बड़ा दुर्लभ विषय है। ये वृंदावन धाम है, प्रिया प्रीतम का महल है, यहाँ की कृपा से पहले हृदय की मलिनता नष्ट हो, स्त्री पुरुष भाव नष्ट हो, भोग भावना नष्ट हो, तब जाके कहीं हम ऐसी अध्यात्म की ऊंचाई पर पहुंचे जहां प्यारी जो हमें प्राण प्यारी लगने लगे। श्री राधा जुग चरण प्रीति उपजय अति भारी, तब तो ये रस समझ में आवे। गुरुदेव ने मन को निर्मल किया तो निर्मल मन की मांग करने वाले श्री श्याम सुंदर उसके हृदय में पधारे। खत्म खेल, अब कोई मैल छू नहीं सकता, क्योंकि स्वयं प्रभु हृदय में विराजमान हो गए। तभी श्रीमद् राधा सुधा निधि में महाप्रभु कह रहे, कर्माणि श्रुति बोधितानि नितराम कुर्वन्तु कुर्वन्तु मा, गूढ़ाश्चर्य रसास्रगादि विषयान् ग्रहणन्तु मुञ्चन्तु वा। वो महापुरुष शास्त्र के अनुसार कर्म करे या ना करे, वो विषयों को ग्रहण करे या त्याग दे, कोई फर्क नहीं, क्योंकि अब अंदर श्री लाल प्रिया विराजमान हो गया, अब कोई मल नहीं छू सकता। पर हमारा चश्मा तो मल वाला लगा है, तो हम वहां भी मल का ही दर्शन करते हैं। ये रस जान दूध सिंघिनी को कनक पात्र ठहरावे, कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये सिंघिनी का दूध है वृंदावन का प्रेम रस, ये स्वर्ण पात्र में टिकता है। गुरुदेव के बच्चा बन जाओगे तो वो तुम्हें स्वर्ण पात्र बना देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही तब रस परसन पावे। ये जो नाना प्रकार की गर्म हवाएं चल रही हैं, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष राग आदि की, गुरुदेव के वचन के अनुसार चलने वाला शिष्य वो आनंद पूर्वक सहन करता है। जैसे एक किसान ऐसे सर्दी के समय में जब आप रजाई छोड़कर निकलना नहीं चाहते, वो बहुत कम वस्त्र धारण करके गेहूं की फसल में पानी लगाता है, पूरा कांपता रहता है ऐसे पूरी रात रात पानी, जो किसान जन है वो जानते हैं। पर उसको शीतलता लगती, पर शीतलता का दुख नहीं होता, क्योंकि उसको पता है कि 2 महीने बाद इसमें 50 मन गेहूं पैदा होगा, हमारा परिवार सुखी पूर्वक 1 वर्ष इसमें भोजन पाएगा। 1 वर्ष जीने के अन्न के लिए वो इतने शीतलता के कष्ट को आनंद पूर्वक सह लेता है। वो अनंत काल तक प्रियालाल के समीप हम सुख पूर्वक रहेंगे, उसके लिए हम काम क्रोध नहीं सह सकते, हम विकार नहीं सह सकते। बोले बहुत कष्ट होता है इनके सहने में, मानते हैं, क्योंकि आप अंतःकरण धर्म से तदात्म्य है, लेकिन आपको जेल हो जाए तो फिर क्या करोगे? आपसे अपराध बन गया, आप जेल भोग रहे हैं, 20 साल की सजा हो गई, अब वहां तुम्हें रखा है क्या सब भोग? जो मिलेगा खाओगे, जैसे आचरण कराए जाएंगे वैसे वहां करोगे, थोड़ा भी बोले तो 4-5 मिलके तुम्हें पीट देंगे। अब उस समय मन को ना वो योगी है ना तपस्वी है, लेकिन सहता है ना, मन को समझा के पूरा जीवन काटता है ना जेल में। तो आप ऐसा मान लीजिए कि अनंत जन्मों के अपराधों से मुक्त करने के लिए हमें अवसर मिल गया, मन को समझा लो भाई, अब ये जन्म हमने श्यामा श्याम को दिया, अब तुम चाहे जितना उलरो, चाहे जितना संकल्प विकल्प करो, अब हम तुम्हें भोगों में नहीं फंसने देंगे। कुंदन बने ताप जग सही सही, ये शब्द ही याद नहीं कर रहे आप, सहत सहत बाढ़े भगत, ये शब्द ही नहीं है अपने लोगों के हृदय में। लाडली जू के लिए किसने प्राण समर्पित किए हैं? हम अपने मन को समर्पित हैं, भोगों को समर्पित हैं, अनुकूलता को समर्पित हैं, सम्मान को समर्पित है, लेकिन प्यारी जू प्यारे जू को कौन समर्पित है? बड़ा गूढ़ विषय, इसीलिए तुम्हारी वृत्ति तुम्हें धोखा दे रही है। नहीं नहीं, सावधान हो जाओ। तात मात सुत दार देह में मति अरुझ है मति मंदा, ए मति मंद हित कुशोर को होए चकोर तू लख वृंदावन चंदा। जब आप सहना शुरू कर दोगे तो आपको इनाम मिलना शुरू हो जाएगा। क्या? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे, हर प्रतिकूलता को सह गया, कुछ नहीं बोला, शांत है प्रभु, जैसा आप करो, जोई जोई प्यारो करे सोई मुझे भावे, शांत अंदर आग लगी बाहर से शांत बैठा है, वो देख रहे हैं प्यारे मेरे लिए ये सहरा है। अब क्या हुआ? बोले रूप माधुरी ध्यान समावे गुण गावे गोविंदा, हृदय में ऐसी भक्ति की बाढ़ आई, ताप जलन मिट गई है, अनंत जन्मों की जलन मिट गई, आनंद मगल हो गया, भगवान का यश गान कर रहा है, सामने रूप माधुरी विराजमान है, प्रिया प्रीतम संग है, अब हो लिया तो आनंद ही आनंद, आनंद के मार्ग में हमारा प्रवेश हो गया है। अब चूकिए मत, मां मुनिस्मर, बार बार भगवत स्मरण करें। अपने लोगों को जो प्राप्त हुआ है बहुत दुर्लभ है। कह रहे कि जितने भी तीर्थ हैं भारत में, विश्व में, कहीं भी, सब तीर्थों का अवगाहन करे एक आदमी, और एक वृंदावन की रज को ऐसे लेके ऐसे रख ले तो इसके करोड़वें अंश के बराबर कोई तीर्थ नहीं है। ये कहानी नहीं कि ऐसे कही गई हो, क्यों? क्योंकि जिनके चरणों को पूरा विश्व नमन करता है वो लालजू महाराज, जिन गोरे चरणों को अपने हृदय रूपी संपुट में छुपा के रखते, उन चरण चिन्हों से चिन्हित ये भूमि है। तज तीरथ हरिराधिका तन दुति करी अनुराग, जिहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। यहां वृंदावन में एक कदम चले तीर्थराज प्रयाग के वास और अवगाहन का फल आपको मिल रहा है। कैसे अपार महिमा! देखो, जैसे दूध पीने से संध्या शक्ति तुरंत बल आता है, तो उस बल का प्रयोग आप कहां कर रहे हैं? खास बातें हुई, आप दूध पी के कर क्या रहे हैं? उस बल का प्रयोग किधर कर रहे हैं? नष्ट कर रहे हैं या सार्थक कर रहे हैं? यहां का बहुत एक एक कण अपार शक्ति से संपन्न है, हम इसका प्रयोग कहां कर रहे हैं? हमारे रहनी पर इसका बहुत बड़ा फल टिका हुआ है। हमारी रहनी गलत हो रही है। हमारा जो महापुरुषों के द्वारा वृंदावन सेवन करने का भाव रहा है उससे बिलग हो रहा है। इसीलिए ये प्रभाव जो वर्णन किया जा रहा है हमारी समझ में नहीं आ रहा है। भला ऐसा कैसे प्रभाव हो सकता है? एक एक पग पर यहां प्रयाग, प्रयागराज को पावन करने की सामर्थ्य किसी और तीर्थों में नहीं, क्योंकि सब तीर्थ प्रयागराज में अपने को पावन करते हैं। जब वो कुंभ पड़ता है, प्रयागराज यहां की परिक्रमा करके एक बार रज में लौटते हैं और फिर इतनी सामर्थ्य आ जाती कि 12 वर्ष तक सब तीर्थों को पावन करते रहते। फिर यहां पग पग पर प्रयाग है। जेहि ब्रज केल निकुंज मग पग पग होत प्रयाग। गुरु ने बतायो राधा मोहन हूं गायो सदा, सुखद सुहायो वृंदावन गाढ़े गहिरे। सदगुरुदेव ने बताया और स्वयं प्रिया प्रीतम ने अपने श्रीमुख से जिस महल का जस गाया, ये वृंदावन धाम है, इसे बहुत गाढ़े से पकड़ लो। गाढ़े से पकड़ने कुछ भी हो जाए, वृंदावन के सिवा हमारे जीवन में किसी भी तीर्थ या किसी भी पुरी या किसी भी धाम का कोई आश्रय नहीं रहेगा, केवल वृंदावन। आप गृहस्थ हैं, बाहर जाइए, वृंदावन भाग के आइए। जैसे छुट्टी होने पर अपने घर जाते हैं, ऐसे आप ड्यूटी के लिए बाहर जा रहे हैं, आपका घर श्री धाम वृंदावन है, ऐसे आश्रय से पकड़ो या इस सीमा के बाहर प्राण भले निकल जाएं, जीवित नहीं जाएंगे, या ऐसा नियम, दोनों भाव आपको श्री जी से मिला देंगे। बड़े भाग्य हैं जो वृंदावन वास कर रहे हैं। कह रहे अद्भुत अद्भुत महिमंडन परे ते परे, जीवन को लाहु हा हा क्यों न ताहि लहुरे। बड़ा अद्भुत वृंदावन, बड़ा अद्भुत वृंदावन। ये ब्रह्मा की सृष्टि से परे है, भगवान शेष जी के फण में विराजमान ब्रह्मांडों में नहीं, ये भगवान की चिदानंदमयी सृष्टि है। यहां हमारे नेत्र चूंकि पार्थिव है इसलिए हम नहीं देख पा रहे, पर महापुरुष जन कहते हैं अगर जीवन का लाभ लेना है तो वृंदावन धाम को हा हा हा हा कह के तात्पर्य कि हाय इतना बढ़िया अवसर है और आप अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं। थोड़े से सुख के लिए, थोड़े से जीवन में हम कैसे फंसते चले जा रहे हैं? ये मुक्त होने का अवसर, फंसने का नहीं, कैसे समझाएं? बस जैसे आंखों का अंधा उसे कहा जा रहा है आगे कुआं है मत गिर जाके, उसको लगता है हमें बहला रहे हैं, हमारा अभ्यास हम निकल जाएंगे, हमारी ऐसी कुछ दशा है। शास्त्र गुरुजन कहते हैं आगे गड्ढा है, गिर जाएगा तू। ओ तुम क्या जानो, हम बहुत बार पार हुए हैं, अब भी पार हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। तुम जिसे देख नहीं पा रहे उसे संबोधन करके तुम्हें बचाना चाहते हैं। बोले आनंद को घन छायो रहत निरंतर ही सरस सुदेशो पपीहापन बहुरे। वृंदावन का रंग कौन खेल पाएगा? जो पपीहापन में होगा, चातक का प्रण। जैसे चातक पी पी कह के पुकारता रहता है और अपने मेघ प्रीतम को देखता रहता है। मेघ प्रीतम गड़गड़ाहट से ओले बरसा के उसे पीड़ा पहुंचाता है। दूसरे पक्षी कहते ले इसका फल, बहुत पी पी कर रहे थे, देखो ना डांट रहा है मेघ और ओले बरसा रहा है तुम पर। तो कहता है ये तुम्हें लग रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरा प्रीतम आनंदित हो रहा है। जैसे कोई अपने प्यारे के ऊपर फूलों का श्रृंगार करे, ऐसे मुझे ओले लग रहे कि मेरे मेघ के द्वारा बरसाए हुए ओले मुझे पुष्प की तरह सुखद लग रहे। पपीहा पन गहुरे, हमारे प्रीतम के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, बड़े बड़े दैवी शक्तियों के द्वारा दी गई अनुकूलता से भी बहुत भारी है, सुखद है। ध्यान देनिया, बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर तुलसी और अंते बने तावन। हमारी प्यारी जू के द्वारा किया हुआ विधान हमारे लिए सर्वोपरि है। भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति भी हमें महासुखद लगनी चाहिए, क्योंकि मेरी प्यारी जू का विधान। बोले इसमें प्यारी जू क्या करेंगे, वो हमें गाली दे रहा था, तो आप शरणागत नहीं है क्या? है तो फिर आपकी तरफ उंगुली कैसे उठ सकती है, आपकी तरफ आंख कोई कैसे दिखा सकता है? ये हमारी प्यारी जी से पास हुआ है कि तुम्हें गाली दी जाए, जिसे अब पता चले कि तुम्हारा अहंकार कितना है। बिल्कुल आप विधान में हैं, बिना विधान के आपके साथ कुछ नहीं हो सकता। और आपसे सत्य कहते हैं, जीवन भर के अनुभव को कहते हैं, जहां कहीं जले तो गलती हमारी हुई, प्रिया प्रीतम की नहीं, पूरे जीवन का अनुभव खुली बात कहते। कभी हमें जलन हुई, कभी असंतोष हुआ है, कभी हमें विषाद आया है, तो उसमें मेरी सोच की गलती हुई है प्रिया प्रीतम की तरफ से, कभी नहीं, कहीं नहीं। अक्षर अक्षर का चिंतन, क्योंकि अपने लोग कोई बाहर के क्रियाओं का चिंतन नहीं, आंतरिक चिंतन होता है। हमसे चूक हुई तो हमें जलन होगी, हमसे चूक हुई तो हमें विषाद होगा। नहीं, आज तक कभी विषाद, भले कोई गाली दे, भले कोई मारे, भले भूखे रहे, विषाद नहीं हुआ। विषाद तब हुआ है जब हमारी चूक हो गई है, हमारा चिंतन बिगड़ गया है, हम वस्तु चिंतन की जगह व्यक्ति चिंतन किया, तभी हम जले, तभी हम परेशान हुए हैं। पपीहा का प्रण लेने वाला वृंदावन के रंग में खेलता है। अपने प्यारे के द्वारा दी गई प्रतिकूलता, यदि प्रतिकूलता नजर आती तो प्रेम कैसा आपका, यही तो खास बात है। हम श्री जी के हमारे माई श्यामा जी को राज बोल दिए, अंतर में देखो ये बात गई क्या, हमारे माई श्यामा जी को राज। एक बार मजनू लैला के दीवाने, सब कोई जानता है लैला राज घराने से थी, उसने संपूर्ण नगर में गुप्त रूप से जितनी भी दुकानें थे सब पे कह दिया था, अगर मजनू कुछ भी खाना चाहे तो उससे पैसे न मांगे जाए, उसकी इच्छा के अनुसार उसको भोजन दिया जाए, क्योंकि मेरे प्रेम में बावरा है। जिससे मांगे, जब लोगों ने देखा ना पैसे मांगे जाते थे ना तो कोई प्रश्न होता है, जो चाहे अंगुली ऐसे करे वो वस्तु उसे दे दी जाती। लाखों मजनू हो गए, रबड़ी पीने वाले, जलेबी हलवा पाने वाले, तो लाखों मजनू तैयार हो गए, हाँ ले ला जलेबी। अब जितनी दुकान वाले हैं सब वहां हिसाब, तो उन्होंने कहा कि इतना एक मजनू कैसे खा सके, बोले है ही नहीं एक मजनू, लाखों मजनू तैयार हो गए, हम किसको जाने कौन असली मजनू। तो उनका मजनू तो एक ही होता है, ये रबड़ी खाने वाले मजनू थोड़े थे, कह दो। अब जब दुकान में कोई भी सामान लेने आए तो सबसे कह देना कल शाम के लैला अपने मजनू से मिलना चाहती है। लाखों जितने मजनू बने थे, हा लैला, सब कोई देख नहीं पाता था उनको, पर्दा करके सामने आई और कहा मैं अपने मजनू के दिल का खून लेना चाहती हूं, कटोरा और छुरी सा। रबड़ी पीने वाले मजनू के पैर पीछे होने लगे, जो असली मजनू, उसने कहा आज मेरा प्यार सार्थक हुआ, मेरे प्यार की आज वृत्ति सार्थक हुई क्योंकि आज कुछ देने का अवसर आया है। चाकू पकड़ी जेवी से बोले बस ये रबड़ी खाने वाले मजनुओं को जेल में डालो, ये है हमारा मंत्र। समझ रहे हो, हम रबड़ी खाने वाले मजनुओं की लाइन में आए, खून देने वाले मजनू नहीं है। देख लो अंदर से देख लो। चातक को पन गहिरे, चातक उड़ता जा रहा था, कुछ पक्षी प्रेण में बैठे थे, कहा आओ थोड़ा विश्राम कर लो। बोले नहीं, ये मेघ के जल से सींचा हुआ वृक्ष नहीं है, इसको नीचे के जल से सींचा गया। हम केवल उसी वृक्ष में बैठते जो केवल मेघ से सींचा जाता है। चातक उड़ता हुआ जा रहा था, बधिक ने निशाना लगाया, बाण मारा, गंगा जी में गिर गया। ऐसे चोच कर ली, मानो किसी पक्षी ने पूछा आप तो मरने जा रहा है, भागीरथी का एक बूंद मुख में चला जाए तो कल्याण हो जाता है, चोच के ऊपर उठाए। बोले मेरा नाम चातक है, मैं पीता हूं तो सिर्फ अपने प्रीतम मेघ के द्वारा दिया हुआ स्वाति का बूंद, नहीं तो मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी गंगा का एक बूंद अपनी चोच पे नहीं आने दूंगा। यह है चातक प्रण।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके
4: रेडियो महारानी पर आप सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
5: यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम् परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मैं प्रकट होता हूँ, मैं आता हूँ जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मैं आता हूँ, जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब मैं आता हूँ। सज्जन लोगों की रक्षा के लिए मैं आता हूँ, दुष्टों का विनाश करने के लिए मैं आता हूँ, धर्म की स्थापना के लिए मैं आता हूँ और युग युग में जन्म लेता हूँ।

हे परम पूज्य बृहस्पति देव, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमें ज्ञान प्रदान करके हमारा कल्याण करें। बीज मंत्री।

विद्यापति बृहस्पति देव, हम आपके बीज मंत्र का जाप करते हैं। हमें ज्ञान प्रदान करें, हमारा कल्याण करें, हमारी रक्षा करें।

0: When you face failures, don't change your goal, change your strategy. You are listening the thoughts of Mr. Vivek Bindra, who is a motivational speaker and a corporate trainer.
1: आप सबका स्वागत है. मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप कंसल्टेंट, बिजनेस कोच. आज बात करूंगा माइंड कंट्रोल और इमोशन कंट्रोल की. काफी लोग बात करते हैं मूड की, कॉन्फिडेंस की, माइंड की, इमोशन की, उसको कैसे बिल्ड किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए. ये वीडियो भगवद गीता के पे आधारित एक शक्तिशाली टूल और फ्रेमवर्क के साथ उसको लेने के लिए, पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए. कृष्ण कंफर्म करते हैं माइंड कंट्रोल के विषय में बहुत कुछ गीता के अंदर. पहला मैं श्लोक लेता हूं, विषयाविनी वर्तन्ते निराहारस्य देहि नाम रसवर्जम रसोपस्य परम दृष्टा निवर्तते. कृष्ण क्या कहते हैं, यू कैन नॉट डिस्कार्ड द लोअर इमोशन अनलेस यू डेवलप अ हायर इमोशन. यू कैन नॉट डिस्कार्ड द लोअर कॉन्शियसनेस अनलेस यू डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस. राइट, सो डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन. एक बार और, पीछे मैंने एक सेक्स अटैचमेंट वाले वीडियो में सिमिलर श्लोक पर चर्चा किया था. डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन. सबसे पहला रूल क्या है, ना तो आप माइंड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप इमोशन कंट्रोल कर सकते हो कभी भी, ना ही आप मूड कंट्रोल कर सकते हो कभी भी. तो आप कर क्या सकते हो, आप इनको रिप्लेस कर सकते हो. कम ऑन, क्या कर सकते हो, रिप्लेस. जैव धर्म में ठाकुर भक्ति विनोद ने 5 प्रकार की चेतनाओं के विषय में चर्चा की थी. आच्छादित, संकुचित, मुकुलित, विकसित और पूर्ण विकसित. ये 5 प्रकार की चेतनाएं होती हैं. पूर्ण विकसित इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस. आप किस कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं उसको क्या धीरे धीरे अपलिफ्ट कर सकते हैं. यू कैन नॉट रिजॉल्व अ प्रॉब्लम एट अ लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस विच हैज क्रिएटेड इट. एक बार और, कम ऑन, आप उस समस्या को सॉल्व ही नहीं कर सकते जिस चेतना में उस समस्या को उत्पन्न किया गया था. अगर आप लोअर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आच्छादित संकुचित के लेवल पे फंसे हुए हैं और यहां आप समस्या महसूस कर रहे हैं, तो इस समस्या को जिस चेतना ने इस समस्या को प्रोड्यूस किया, उसी चेतना में रहकर आप इस समस्या को रिजॉल्व नहीं कर सकते. पहला रूल क्या है, अपनी चेतना को उठाना पड़ेगा. कम ऑन, क्या करना पड़ेगा, रेज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, डेवलप अ हायर कॉन्शियसनेस टू डिस्कार्ड द लोअर वन. परम दृष्टा निवर्तते, नहीं तो तकलीफ रहेगा. अब कृष्ण से छठे अध्याय के 34वें श्लोक के आसपास चर्चा हुई कृष्ण और अर्जुन की, कि माइंड कंट्रोल करें कैसे. अर्जुन क्या कहते हैं, मुझसे तो माइंड कंट्रोल होता ही नहीं भगवान. तो छठे अध्याय में कृष्ण कहते हैं, असंशयम महाबाहो हो मन दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृहते. कम ऑन, अभ्यास वैराग्य, अभ्यासेन तु कौन्तेया वैराग्येन च गृहते. अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ही होगा, नहीं तो असंशयम महाबाहो, हे महान बलशाली भुजाओं वाले अर्जुन, आपसे भी मन्ना दुर्निग्रहम चलम, माइंड कंट्रोल नहीं होने वाला. तो बोला फिर करना क्या है, अगर मैं भी नहीं कर सकता तो करना क्या है. तो कृष्ण ने क्या कहा, कुछ अभ्यास और कुछ वैराग्य. आप जानना चाहते हैं क्या अभ्यास क्या वैराग्य. अभ्यास बिल्ड करना है ऊंची चेतना में आने के लिए, वैराग्य क्रिएट करना है इस चेतना में रोकने के लिए जो सोर्सेज हैं उनसे वैराग्य क्रिएट करना. अभी ये करेंगे कैसे, देखिए ध्यान दीजिए. आपका माइंड बैंक एक स्टोर हाउस की तरह काम करता है. उस स्टोर हाउस में बहुत प्रकार के पुरानी एक्सपीरियंस और पुरानी लेवल की कॉन्शियसनेस के द्वारा इमोशंस ऑलरेडी है, कुछ छुपे हुए, दबे हुए, कुछ उठे हुए, कुछ निकले हुए, अलग अलग प्रकार के उस डेटा बैंक के अंदर इमोशंस है. देर आर 36 टाइप्स ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशन, जिसमें से पहले 12 नेगेटिव इमोशन, बीच के 12 थोड़े न्यूट्रल इमोशन और अगले 12 बड़े स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्रोडक्टिव इमोशन. आपके पास मेमोरीज है, आपके स्टोर हाउस के अंदर माइंड में मेमोरीज है. उन मेमोरी में एक्सेस करिए पहले किसी इंसिडेंट को जो प्रोडक्टिव इमोशन से जुड़ा हुआ इंसिडेंट था. अब मैं फ्रेमवर्क दूंगा, अभी पूरा समझ में नहीं आएगा आपको जब तक पूरा वीडियो नहीं देखते. पूरा वीडियो देखिए, रुके अभी साथ में, मेरे साथ ही रहिए. अभी आप एक फ्रेमवर्क देने वाला हूं. प्रोडक्टिव इमोशन की मेमोरी को वापस रिवाइव करना है. याद करिए वो दिन जो आपकी लाइफ का हाईएस्ट अचीवमेंट का दिन था. याद करिए कोई ऐसा दिन जिस दिन आप बहुत प्रोडक्टिव, बहुत सक्सेसफुल और बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस किए थे. याद करिए कोई ऐसा दिन जिस दिन आपने कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया था. उस दिन आपके आसपास क्या हो रहा था, उस मेमोरी बैंक से उसको ढूंढ के निकालिए, ढूंढिए उस मोस्ट प्रोडक्टिव जो एक्सपीरियंस था आपके जीवन का, जो बहुत उस दिन आप बहुत खुश थे, आपने उस दिन बहुत कुछ अचीव किया था अपनी लाइफ में, आपकी लोग बहुत तारीफ कर रहे थे, याद करिए अब तीन चीजें, मैं तीन प्रश्न दे रहा हूं। See what you saw, feel what you felt, hear what you heard. देखिए, see what you saw, पहला चीज, उस दिन आपके आसपास कौन था उस सबको देखिए। दूसरा, hear what you heard, लोग आपके बारे में उस दिन क्या बात कर रहे थे उसको याद करिए। उसके बाद feel what you felt, उस समय आपके मन में क्या emotions थे, आप कैसा सांस ले रहे थे, आप कैसा experience कर रहे थे, आपके कंधे कैसे थे, आपका चेहरा कैसा था, आप कैसा feel कर रहे थे उस दिन, उन इन तीन प्रश्नों के उत्तर को ढूंढिए। यानी कि दो steps हैं। पहला step, वो incident जो most productive incident था आपकी life का, उसको ढूंढ के लाइए, अपने मेमोरी बैंक से निकाल के लाइए। दूसरा, तीन प्रश्न लीजिए अपने आप से, करिए सी व्हाट यू सॉ, देखिए उस दिन क्या हो रहा था आपके आसपास, कौन कौन था। हियर व्हाट यू हर्ड, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे आपके साथ में। फील व्हाट यू फेल्ट, आपका फिजियोलॉजी और साइकोलॉजी कैसा था उस समय, उसको वापस रिवाइव करके लाइए। ये तीन प्रश्नों का जब उत्तर मिलेगा तो वो न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे आपके। क्या खुल जाएंगे? न्यूरो पाथवे खुल जाएंगे। अब आपके मेमोरी बैंक से वो वापस आकर के आपके कॉन्शियसनेस में बड़ा होने लग जाएगा। उस समय की जो कॉन्शियसनेस थी वो कॉन्शियसनेस तुरंत वापस आ जाएगी, और वो कॉन्शियसनेस आते ही आप अपने माइंड को, अपने मूड को, अपने इमोशन को डेवलप कर जाएंगे, उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस पे फिर से वापस आ जाएंगे, और उस एलिवेटेड कॉन्शियसनेस से उस मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस, मोस्ट प्रोडक्टिव मेमोरी जिसको आप ट्यून इन कर गए। एफएम चैनल एक समय में एक शहर में 7-8 एफएम चैनल चल रहे होते हैं, आप ट्यून इन करते हैं और बेस्ट एफएम चैनल को चूज करने का अधिकार है आपके पास। एक समय में 700 टीवी चैनल्स हैं आपके टेलीविजन पे, किस चैनल को आप ट्यून इन करना चाहते हैं और किस चैनल को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उसका पूरा अधिकार है आपके पास। देयर इज अ रेंज ऑफ इमोशंस इन योर लाइफ। कपड़े खरीदने जाते हैं आप किसी शोरूम के अंदर, देयर इज अ रेंज ऑफ क्लोथ्स इन द शोरूम। अभी जो पहला कपड़ा मिला ऐसा नहीं कि आप वही लेकर के पहन लेते हैं, आप चूज करते हैं जो आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, जो आपके लिए ठीक है, जो आपके लिए अच्छा है। ठीक उसी प्रकार से डू नॉट हैव द एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस। एक बार और बड़ी अच्छी बातें बोल देता हूं बीच बीच में मैं, कम ऑन, डू नॉट हैव एक्सपीरियंस, क्रिएट एंड चूज योर एक्सपीरियंस। अपने मेमोरी बैंक में जाइए, निकालिए, ढूंढ के निकालिए, सी व्हाट यू सॉ, उस दिन क्या हो रहा था, लोग आपसे क्या बात कर रहे थे, वो सारी मेमोरी को बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए, बड़ा करते जाइए। और जब आपकी कॉन्शियसनेस उस मेमोरी से भर जाएगी, आप उसी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड, सबसे मोस्ट प्रोडक्टिव कॉन्शियसनेस के पीक स्टेट पे, पीक परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी वाली कॉन्शियसनेस में एंटर कर गए। जैसे ही आप इस लेवल पे आए, अब क्या होगा, अब आपके पास यही हाईएस्ट मोस्ट प्रोडक्टिव मूड और वो वही माइंडसेट फिर से आ गया। स्टूडेंट्स जो पढ़ाई कर रहे हैं, मेरे टूल्स को ध्यान से देखते रहिए, मैं आपके लिए कई ऐसे टूल्स डालने वाला हूं, क्योंकि स्टूडेंट्स मुझसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। आजकल मैं स्टूडेंट्स के लिए फ्री सेमिनार्स की तैयारी भी कर रहा हूं। 15 अप्रैल को मेरा पहला फ्री बड़ा सेमिनार स्टेडियम में होने वाला है, इंदिरा गांधी स्टेडियम में, और उसके बाद आपके शहरों तक पहुंचूंगा। देखिए, मैं मुख्य तौर पर तीन बातें बताई। पहला स्टेप है चूज योर मेमोरी, सो योर चॉइस ऑफ मेमोरी विल डेवलप। सेकंड स्टेप, अ कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्शियसनेस, उस मेमोरी में क्या कॉन्शियसनेस थी। सेकंड स्टेप, कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्शियसनेस अभी मिल जाएगा आपको। आपको चॉइस ऑफ मेमोरी, उससे क्या आएगा आपका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्शियसनेस, इसको बोलेंगे इट विल डिटर्मिन हाउ डू यू फील नाउ, हाउ डू यू फील नाउ। हाँ, तो पहले मेमोरी ढूंढिए, उससे आपका कॉन्शियसनेस बदलेगा, हायर कॉन्शियसनेस हो जाएगा, और तीसरा उसका रिजल्ट क्या आएगा, हाउ डू यू फील नाउ। इमेजिन करिए, अगर आप हर समय मोस्ट प्रोडक्टिव, पीक परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी की कॉन्शियसनेस को बरकरार रख पाए, तो आपका जिंदगी 10x हो जाएगा। कम ऑन, क्या हो जाएगा, 10x, यू कैन ग्रो 10 टाइम्स बेटर। इमेजिन करिए, अगर हर समय आप उसी कॉन्शियसनेस में रह पाए जो पीक परफॉर्मेंस की कॉन्शियसनेस थी। एक साधक को साधना के लिए उसको सबसे हाईएस्ट कॉन्शियसनेस को वापस लाना चाहिए, एक स्टूडेंट को पढ़ाई के लिए अपना मोस्ट प्रोडक्टिव पढ़ने वाले दिन की फीलिंग और उसके इमोशन, उसकी साइकोलॉजी, उसकी फिजियोलॉजी को के लाना चाहिए। इसी प्रकार एक बिजनेसमैन को नेगोशिएशन के दौरान, सेल्स के दौरान, परिवार में, रिलेशनशिप में, जिम में, हेल्थ के लिए, हर समय जब भी आप चाहें, एक स्पोर्ट्समैन, एक एथलीट अपनी बेस्ट कॉन्शियसनेस को रिवाइव कर सकते हैं। केवल याद रखिए फ्रेमवर्क, सी व्हाट यू सॉ, फील व्हाट यू फेल्ट, हियर व्हाट यू हर्ड। तो उसका अर्थ क्या हुआ, आपको महसूस नहीं करना है, अपने आप को महसूस कराना है, राइट। यू ट्यून इन टू व्हाट यू वांट टू क्रिएट, महसूस जो इमोशन, जो आप एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस होता नहीं है, एक्सपीरियंस क्रिएट किया जाता है, आप कर सकते हैं। आपके जो लॉस्ट प्रोडक्टिव न्यूरो पाथवे थे, आप उनको रिकॉल के द्वारा वापस ले आएंगे। वो न्यूरो पाथवे जो आपके लिए खो गए थे, छुप गए थे, दब गए थे, आप उनको वापस रिवाइव करके ले आएंगे, उन्हीं प्रोडक्टिव न्यूरो पाथवेज को जनरेट कर देंगे।

शानदार ट्रैक के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस। भाई 7 बज चुके हैं और सुबह हो गई है प्यारी वाली, यानी कि अब टाइम हो गया है बिस्तर छोड़कर जाने का ऑफिस। तो देखिए, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर अपने घर में ही क्यों नहीं है, आज के दिन को अच्छे से एंजॉय करने का तरीका ये है, अच्छे अच्छे गाने सुनिए, गर्मा गर्म मसाले वाली चाय की पहली चुस्की लीजिए और एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी पे मॉर्निंग एक्सप्रेस शो को, जहाँ पर आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, यानी कि यहाँ आपको मिलने वाला है एंटरटेनमेंट का डबल डोज। साथ ही आपको मिलेगा वेदर अपडेट से लेकर सोशल स्यापा और क्या कुछ हो रहा है आपके आसपास, यानी कि किस तरह का स्कैम आ गया है मार्केट में, सब कुछ आपको बताने वाली हूँ। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना होगा इंतजार, तो बस फटाफट से अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और एंजॉय कीजिए स्ट्रेक को, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ, प्लीज मुझे गलत मत समझना। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती।
1: मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ संजना, सिर्फ तुम्हारा।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो टिकट कटवा लेना।
3: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
4: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है। हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे। इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
5: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

शानदार से ट्रैक के साथ एक बार फिर से लौट आई हूँ मैं करने आपसे ढेर सारी बातें। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई टाइम हो गया वेदर अपडेट का। अगर वेदर की बात करूँ ना तो हाईएस्ट टेम्परेचर आज रहने वाला है 32 डिग्री, इसी के साथ अगर मिनिमम की बात की जाए तो 28 डिग्री है। विंड स्पीड आपको 19 मिलने वाली है, ह्यूमिडिटी रहने वाली है 75%। और साथ ही आज ना लाइट रेन की प्रिडिक्शन है, यानी कि बारिश तो होगी लेकिन हल्की फुल्की। और इसी हल्की फुल्की बारिश से बचने के लिए ना अपना ध्यान जरूर रखिएगा। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी। सुबह की लेजीनेस को दूर भगाने के लिए सुनते रहिए मॉर्निंग एक्सप्रेस ओनली ऑन रेडियो महारानी।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्ज नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों,
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये, सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो हेलो टिकट कटवा लेना।
2: यार कभी खिड़की से जो ठंडी हवा आती थी ना, आज उसमें भी जहर घुला महसूस होता है।
3: क्योंकि तन्हा होकर भी ये हवा हमसे बहुत कुछ कहती है, हमारी गलतियों की सजा ये चुपचाप सहती है। अभी भी वक्त है इसे शुद्ध कर दुलार दे, इस धरती को उसकी खोई मुस्कान फिर से उधार दे।
4: रेडियो महारानी आप सभी से अपील करता है अपनी खूबसूरत से जिंदगी को पॉल्यूटेड एयर से संकट में ना डालें और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट होने से बचाएं।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो। क्योंकि उनका साथी हमारा सुकून है।

अच्छा चलिए पहले इस सवाल का जवाब दीजिए कि आखिरी बार आप बिना किसी टेंशन के फैमिली या फ्रेंड के साथ पिकनिक पर कब गए थे? याद है? नहीं है ना। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंशली आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो भाई अगर याद नहीं भी है ना तो कोई जरूरत नहीं है याद करने की, फिर से सेलिब्रेट कर लेते हैं पिकनिक को। आज हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज नहीं खैर जुलाई जो मंथ है वो डेडिकेट किया जाता है नेशनल पिकनिक मंथ के लिए। और अगर पिकनिक मंथ की मैं बात करूँ तो पिकनिक का मतलब सिर्फ बाहर जाना खाना खाना नहीं होता है, बल्कि अपनों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना होता है। समझ तो आप गए ही होंगे कि क्या कहने वाली हूँ मैं। खैर देखिए वैसे भी वीकेंड में आ गया तो फटाफट से पिकनिक प्लान कर ही लीजिए, लेकिन हाँ ये जरूर याद रखिएगा जब आप जा रहे हैं कहीं बाहर और अपने साथ अगर पेपर्स या फिर कोई भी पैकेट लेकर जा रहे हैं तो प्लीज अपना कचरा अपने साथ अपने घर लेकर आए और उसे डस्टबिन में ही डंप कीजिए, बिकॉज ये जो मेमोरीज आप क्रिएट करने वाले हो ना आपके साथ साथ हमारे अर्थ के लिए भी हेल्दी होनी चाहिए। और अगर पिकनिक में बात करूँ ना तो बेस्ट मेमोरीज किसी एक्सपेंसिव प्लेस पर नहीं बल्कि अपनों के साथ बिताए सिंपल मोमेंट्स में बनती है, ये जरूर याद रखिएगा। तो हम सब नेशनल पिकनिक मंथ सेलिब्रेट कर रहे हैं तो इस वीकेंड थोड़ा अपनी फैमिली को वक्त दीजिए और इस भागदौड़ भरी जिंदगी में थोड़ा सा पॉज लीजिए। साथ ही सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

कभी आपने सोचा है कि आपकी ये जो छोटी सी केयरलेस वाली हैबिट है बहुत बड़ा एक्सीडेंट करा सकती है। आज इसी पर बात करने के लिए मैं फिर से लौट आई हूँ आपके साथ रेडियो महारानी 89.6 FM पर। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। मैं हूँ अर्जुनशी आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। जिस एक्सीडेंट की मैं बात कर रही थी, दरअसल वो होता है कार डोर खोलने से। जब हम रैंडमली कभी भी गाड़ी से उतरते वक्त ध्यान नहीं देते और कार का दरवाजा खोल कर सीधा चल पड़ते हैं, कई बार आपने देखा होगा वो छोटा सा दरवाजा बहुत बड़े एक्सीडेंट का रीजन बन जाता है। एंड रिसेंट ऑब्जर्वेशन की अगर बात करें तो रिसेंट ऑब्जर्वेशन के मुताबिक बिना चेक किए कार का डोर ओपन करना अब केयरलेसनेस कहलाएगी। और अगर बात की जाए इस इंसिडेंट की, तो ये तब सामने आया जब एक रिसेंट केस में बाइक राइडर डायरेक्टली कार के दरवाजे सडनली खुलने से टकरा कर जमीन पर गिर गया। तो हमें इस इंसिडेंट से ये सीख मिलती है कि डोर ओपन करने से पहले साइड मिरर चेक जरूर करें, पीछे से आ रहे व्हीकल का ध्यान रखें, रोड पर हर सेकंड अलर्ट रहना जरूरी है और सिंपल सेफ्टी हैबिट्स को अपनाएं, जैसे कि ओपन द डोर विद केयर, नॉट इन अ हरी। छोटी सी अवेयरनेस बड़ी एक्सीडेंट से बचा सकती है। और बस इसी इंसिडेंट के साथ में आज मैसेज ऑफ द डे भी लेकर आई हूँ। रोड सेफ्टी सिर्फ रूल्स नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगली बार जब आप कार से उतरें, एक सेकंड रुककर चेक जरूर कर लीजिएगा कहीं आपके आसपास दाएं बाएं कोई आ तो नहीं रहा, और अगर कोई आ रहा है तो एक सेकंड रुक जाइए, उन्हें जाने दीजिए, फिर अपने कार का दरवाजा खोलिए और आराम से जाइए। आखिरकार आप अपनी मंजिल तक तो पहुंच ही गए ना, तो क्यों ना थोड़ा सा सेफ्टी के साथ पहुंचा जाए। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए पैरासोटैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: मोबाइल पर एक क्लिक से आप दुनिया घूम सकते हैं, पर वाहन चलाते समय मोबाइल यूज करने पर आप दुनिया से गुम हो सकते हैं।
1: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यह होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

क्या आपने कभी इस रूल के बारे में सुना है? आई नो आपने कभी नहीं सुना होगा क्योंकि मैंने भी आज पहली बार सुना है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ अर्जुन जी आपके साथ और शो लेकर आ गई हूँ मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज मैं एक रूल बताने वाली हूँ। और रूल कुछ इस तरह से, अपनी गर्लफ्रेंड की प्लेट का खाना ज्यादा टेस्टी क्यों लगता है? कभी आपने सोचा ये चीज? देखिए भाई, मैं सिंगल हूँ तो मुझे कभी ये सुनने का सौभाग्य ही नहीं मिला है कि मेरी प्लेट से खाना किसी को अच्छा लगा हो। लेकिन आपको पता है, अपनी प्लेट में वही फ्राइज बहुत ज्यादा नॉर्मल लगते हैं, जो आपकी गर्लफ्रेंड की प्लेट से अगर आप ट्राई करते हो ना, वो बहुत ज्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इस रूल के बारे में सोशल मीडिया पर हो रही है इन दिनों बहुत सारी बातें, और सोशल मीडिया पर एक क्लेम बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है, और क्लेम ये है कि पार्टनर की प्लेट से खाया हुआ खाना ज्यादा टेस्टी लगता है। कि भाई उस खाने में ऐसा होता क्या है? और अगर बात करूँ ना साइंस की, तो साइंस ने इस बात को बहुत ही सिंपल तरीके से कंफर्म किया है। जैसे कि साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि जब खाना इमोशंस शेयरिंग और किसी अपने के साथ जुड़ा हो, तो तब हम उस खाने को ज्यादा एंजॉय कर पाते हैं। इसके पीछे की बस साइंस इतनी सी है। तो जिस तरह से साइंस ने इसके पीछे की कहानी बताई है ना, वहाँ तो बस एक ही चीज समझ आती है कि प्यार की असली लैंग्वेज कभी कभी आई लव यू नहीं होता, मेरी प्लेट से मत खा भी होता है। तो भाई यहाँ पर समझ आया है कि इस टेस्टी फूड के पीछे की कहानी सिर्फ और सिर्फ प्यार है। तो ऑनेस्टली प्यार है। तो भाई ये बताइए, आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जो अपनी प्लेट से नहीं बल्कि दूसरों की प्लेट से खाना खाते हैं? और कई बार ना सुनते भी हैं कि अपनी प्लेट से क्यों नहीं खाते? तो भाई बता देना नेक्स्ट टाइम कि प्यार ही आपसे इतना है कि आपकी प्लेट का खाना भी टेस्टी लगता है, वो टेस्ट मेरी प्लेट में कहाँ। और इसी के साथ एंजॉय कीजिए ट्रैक जो है खास आपके लिए, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही, यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: अपनी वाइफ को हैकर्स और रोड के माइकल शुमाकर को वर्नबी से बचा के रखो। हैकर्स ऐसे फिशिंग करते हैं जैसे हम फ्री समोसे का पोस्टर देख के दौड़ते हैं। और तुम शेड लिंक मत खोलना, वरना तुम्हारा डेटा उड़ जाएगा इतनी स्पीड से कि गूगल मैप्स भी बोल देगा रीकैलकुलेटिंग लाइफ। पासवर्ड स्ट्रॉन्ग रखो, पासवर्ड 123 मत लिखना, ये देख के तो हैकर भी बोल देगा भाई इतना आसान क्या। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाओ, ऐप्स अपडेटेड रखो, वरना स्कैमर्स पार्टी मनाकर तुम्हारे ही अकाउंट में नाचने लगेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप भी नाइट आउल हैं या फिर अर्ली बर्ड, बिकॉज आज ना मैं बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक पर, जो लोग लेट सोते हैं उनके लिए क्या फायदा है और जो लोग जल्दी सो जाते हैं ना उनके लिए क्या नुकसान है। वेलकम बैक टू रेडियो महारानी, मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। तो आज मैं बात करने वाली हूँ नाइट आउल और अर्ली बर्ड के बारे में, और अगर आप भी उन लोगों में से है ना जो रात के 2 बजे बोलते हैं बस 5 मिनट और फिर जाकर कहीं सोते हैं, तो आज का ये इंटरेस्टिंग फैक्ट सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। कुछ रिसर्च में ये देखा गया है कि लेट सोने वाले कुछ लोग रीजनिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप लेट तक जागेंगे तभी आप इंटेलिजेंट बन सकेंगे। तो इसके पीछे का रियलिटी चेक है, और रियलिटी चेक कुछ इस तरह से है। साइंस ये भी कहती है कि 7 से 9 घंटे की अच्छी नींद दिमाग, मेमोरी और हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, चाहे आप अर्ली बर्ड हो या फिर नाइट आउल। सो माय डियर लिसनर, स्मार्ट बनना है तो सिर्फ लेट मत जगिए, अच्छी नींद भी लीजिए, और अगर आप लेट सोते हैं तो डोंट वरी, आप बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, ये ऑलरेडी साइंस प्रूव कर चुका है। लेकिन अपनी स्लीप साइकिल का ख्याल रखना भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इसी के साथ ही एंजॉय कीजिए प्यारा सा ट्रैक, मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।
1: For you, Sadlaben. Kim Cho, Majama. 17, 17 and a half, 18 and a half.

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: शानदार सुरक्षा के साथ स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम पर। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस। और आज स्टूडियो में मैं अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं गायनेकोलॉजिस्ट प्रीति चौधरी फ्रॉम यथार्थ हॉस्पिटल। डॉक्टर से आज हम बहुत कुछ जानने वाले हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, बिकॉज कहा जाता है कि सर्वाइकल कैंसर एक ऐसा कैंसर है, एक ऐसी डिसीज है जिसे प्रिवेंट किया जा सकता है और जिसके बारे में अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डॉक्टर आज हमें ये बताइए कि सर्वाइकल कैंसर होता क्या है और स्पेशली अगर इंडिया में बात करूँ तो विमेन्स के लिए ये कितना बड़ा हेल्थ कंसर्न बन गया है।
1: सो सर्वाइकल कैंसर इज द कैंसर ऑफ द माउथ ऑफ द यूट्रस, जिसे बच्चेदानी के मुंह का कैंसर बोलते हैं। और ये जो है इट इज वन ऑफ द बर्डन ऑन फीमेल हेल्थ, जिसको इसका इम्पोर्टेंस इसलिए है कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है ये कॉमनेस्ट कॉज ऑफ कैंसर है इन इंडिया अमंगस्ट फीमेल्स एंड इट इज वन ऑफ दोज कैंसर्स विच कैन बी प्रिवेंटेड, जिसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। सो इसलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। सर्वाइकल कैंसर के जो सिम्टम्स होते हैं वो बहुत ही नॉर्मल, जो फीमेल्स में कॉमन गाइनी प्रॉब्लम्स होती हैं वैसे ही होते हैं। जैसे फीमेल्स के अंदर बीच बीच में ही ब्लीडिंग होते रहना, जिसे इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग बोलते हैं, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग होना, या फाउल स्मेलिंग वाइट डिस्चार्ज होना, ये सारी चीजें जो है, या आज के टाइम में ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स होना इज वन ऑफ द कॉमनेस्ट रीजंस। सो इन चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको इस टाइप की कोई भी प्रॉब्लम है कि कभी भी ब्लीडिंग हो जाती है, पीरियड्स का कोई पैटर्न नहीं है या फाउल स्मेलिंग डिस्चार्ज है, तो आपको इमीडिएटली जो है अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
4: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना।
5: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
4: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: शानदार सुरक के साथ एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 एफएम के साथ। मैं हूँ आरजे अंजलि आपके साथ और शो चल रहा है मॉर्निंग एक्सप्रेस, जहाँ आज हम बात कर रहे हैं सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस को लेकर। और आज डॉक्टर प्रीति हमें बता रहे हैं सर्वाइकल कैंसर होता क्या है, किस तरह से इसके सिम्टम्स को पहचानना चाहिए और कब अपने डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। तो डॉक्टर मुझे ये बताइए कि पैप्समेयर और एचपीवी टेस्ट की बात करूं तो क्यों इतना ज्यादा जरूरी होता है सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए ये टेस्ट, और साथ ही विमेन को कब रेगुलर स्क्रीनिंग शुरू करानी चाहिए।
1: सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंटेबल किस लिए है? सर्वाइकल कैंसर जो है वो एक वायरस की वजह से होता है जिसे एचपीवी बोलते हैं। तो एचपीवी में कुछ हाई रिस्क के वायरसेस होते हैं जो कि हम जो इसके स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं उससे हम पकड़ सकते हैं। इसको प्रिवेंट करने का तरीका ये है कि एक तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स अवॉइड करने चाहिए, यू शुड यूज प्रॉपर मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, और दूसरा सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग दो फॉर्म्स में होती है, एक इन द फॉर्म of pap smear, another one is liquid based cytology. जो sensitivity of liquid based cytology is better than pap smear. तो इसमें आपने age group जो है, you should start screening from the age group of 30 years till the age of 65 years. अब इसको क्योंकि हमें इसका एक कारण मिल गया कि ये HPV virus की वजह से हो रहा है, तो इसको prevent करने के लिए nowadays we have cervical cancer vaccines which can be given from the age group of 9 years. 9 to 15 years में, and the vaccines are of two types. One is quadrivalent and another one is nanovalent. So these vaccines can be given from the age group of 9 years to the age group of 45 years. If the vaccine is given from the age group of 9 to 15 years, only two vaccines are required. बट अगर इस एज ग्रुप के बाद आप लगाते हैं तो फिर 3 वैक्सीन आर रिक्वायर्ड, एंड अगर आपका सही टाइम पे वैक्सीन लगा है तो इट कैन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर अप टू द रेंज ऑफ 90 to 99%। विद दिस काइंड ऑफ बर्डन ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड वी हैव वैक्सीन अवेलेबल, सो इट इज अवर ड्यूटी टू गेट अवर सेल्फ वैक्सीनेटेड एंड अवर डॉटर्स, सिस्टर्स एंड फ्रेंड्स, वी शुड ऑल टेल ईच अदर येस दिस इज द बर्डन एंड दिस वैक्सीन इज अवेलेबल विच कैन प्रिवेंट सर्वाइकल कैंसर अप टू ऑलमोस्ट 100%। सो आई वुड ऑन दिस डे आई वुड से दैट एवरी वन, एवरी फीमेल फ्रॉम द एज ग्रुप ऑफ 9 to 45 years मस्ट टेक सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन।
0: थैंक यू सो मच डॉक्टर, एंड बातों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा लेकिन इस म्यूजिक ब्रेक के बाद। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ
0: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा
1: सबका ये। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली को मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बहुत सारी मस्ती के बाद, बहुत सारी अपडेट्स के बाद और बहुत सारे ट्रेंडिंग म्यूजिक के बाद फाइनली अब टाइम हो गया मेरा यहाँ से जाने का। और सुबह 7 बज रही थी, अब 10 बजने वाले हैं। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरा इंतजार जरूर कीजिएगा। आप फिर मिलेंगे कल सेम टाइम सेम प्लेस ओनली ऑन रेडियो 89.6 FM पर। लेकिन तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, साथ ही एंजॉय कीजिए रेडियो महारानी के मॉर्निंग एक्सप्रेस के साथ बाकी शोज को, और बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: अरे भाई साहब, ये बीएलओ अभी भी घर घर क्यों आ रहे हैं?
1: क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर 2026 की गणना अवधि 24 जुलाई 2026 तक बढ़ा दी है।
0: अच्छा, हमें क्या करना है?
1: अगर आपने अभी तक गणना प्रपत्र भरकर बीएलओ को वापस जमा नहीं किया है तो अपना गणना फॉर्म सही जानकारी के साथ बीएलओ को दें या ईसीआई नेट ऐप के माध्यम से जमा करें ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूट न जाए।
0: उसके बाद
1: 31 जुलाई को प्रारंभिक मतदाता सूची प्रकाशित होगी। 31 जुलाई से 30 अगस्त तक दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके बाद 3 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित होगी।
2: मतदाता सूची में अपना नाम सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए 1950 पर कॉल करें या voters.eci.gov.in पर जाएं।
1: जनहित में जारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।

इसी गाने के साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं फरीदाबाद की गलियारों से। सबसे पहले मौसम के बारे में, जहाँ 10:06 हो रहे हैं और इस वक्त 32 डिग्री सेल्सियस शहर भर का तापमान बना हुआ है। वही बात की जाए जहाँ बारिश का मौसम कल भी बना हुआ था और आज भी बारिश का मौसम है। आज धूप कम बल्कि आज बारिश के आसार ज्यादा लग रहे हैं, जहाँ मौसम विभाग का कहना है। बाकी बारिश होती है उस हिसाब से या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। सावन का मौसम है, सावन का महीना है, तो बारिशें तो बिल्कुल ऐसी लगी रही रहने वाली है। और बात की जाए एक की, तो एक अब दिन पर दिन थोड़ा थोड़ा 10-10, 12-12 नुमारी करके बढ़ता हुआ जरूर नजर आ रहा है। 89 से 109, 109 से 119 और आज 128 पर पहुंचा हुआ एक जो अनहेल्दी पॉल जो एयर बनी हुई है शहर की, इसे सुधारना भी हमारा ही फर्ज है। तो कुछ गाइडलाइन जो गवर्नमेंट फॉलो कर रही है, कुछ हमें फॉलो करनी, काबूल करें, काबिज ना जलाएं, जिससे कि शहर की हवा को साफ सुथरा बनाया जा सके।

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
2: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूं लेकर के शो यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। जैसे कि दोस्तों आप सब जानते हैं कि सावन की शुरुआत हो चुकी है और आज से मंदिरों में रौनक। और हम लोग बात करें भोले यानी कि कावड़ यात्री, कावड़ लेने के लिए, जल लेने के लिए हरिद्वार या बागी गंगा जी और जगहों पर जाते दिखने वाले हैं जहां रूट्स भी डाइवर्ट किए गए हैं। मैं अगर बात करूं फरीदाबाद पुलिस की, अगर बात की जाए कुछ रूट्स जहां पे जाने के लिए बिल्कुल नाकाबंदी कर दी गई, आप लोग वहां ना जैसे कावड़ यात्री ही जा पाएंगे। 25 से अधिक जगहों पर नाकाबंदी भी की गई है, CCTV भी लगाए गए हैं। पहला मार्ग जो होने वाले कालिंदी कुद से MCD टोल होती है आगरा कैनल के किनारे जाना होगा, जहाँ अगला कैनल की रोड है उसको बंद किया है कुछ दिन तक जब तक कावड़ यात्री रहने वाले, जैसे कि आप लोग अपना ये रूट पहले से ही डाइवर्टेड रखें। अगर आप उस रूट पर आने वाले हैं, उस रूट से कहीं जाने वाले हैं, तो कुछ और तरीका, कोई और रूट सोचें जिससे कि ना ही आपको देर हो, ना ही आपको परेशानी हो और ना ही कावड़ यात्रियों को। रूट डाइवर्ट कर दिया पहले ही बता चुका हूँ, तो इस रूट के अकॉर्डिंग अपनी जर्नी जहाँ भी आप जाना चाहते हैं वहाँ के लिए प्लान करें। बाकी और चर्चाएँ होती रहेंगी, उससे पहले एक ऑर्डर है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में एक खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधर हाथ ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौटा हूं लेकर के शो, यानी कि फरीदाबाद की गलियों से। यहाँ दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, आज दिन साइबर फ्रॉड्स होते नजर आते हैं, तो ये साइबर फ्रॉड्स के लिए यही कहना चाहूंगा, जहाँ कभी कोरियर के नाम पर कभी अनवांटेड नंबर से कॉलिंग आना, कभी शेयर्स के पैसा लगाना, डेब्ट्स पे पैसा लगाना, जॉब्स के नाम पे, ऑफर्स के नाम पे, डिस्काउंट के नाम पे, ना जाने कितने फ्रॉड्स, कितने स्कैम्स। इन फ्रॉडर और स्कैमर से बचने का एक ही तरीका, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस। और किसी भी वजह से अगर आपके अकाउंट से कुछ पैसा डिडक्ट हो जाता है फ्रॉडर्स के चक्कर में, तो तुरंत सबसे पहले 1930 पर कॉन्टैक्ट करें, कंप्लेंट रजिस्टर करें, डिटेल्स पूछे जाए तो डिटेल्स बताइए, जिससे कि आपका पैसा फ्रीज किया जा सके बिटवीन ही, जिससे आपको पैसा वापसी मिल जाएगा और स्कैमर्स आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। बाकी ऐसी भी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक ओनली ऑन रेडियो महाराणा।

0: रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: दियारा, जिनके कंधों पर बचपन बीता, आज उन्हीं बूढ़े कंधों को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि उनका साथ ही हमारा सुकून है।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: एटीएम पिन समय समय पर बदलते रहें। बिना गार्ड वाले एटीएम का उपयोग करने से बचें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित

रेडियो महारानी पर एंटरटेनमेंट का डोज अभी बाकी है मेरे

0: 89.6 FM।
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: ऑफिस स्ट्रेस से लेकर बैक पेन तक और एंजाइटी से लेकर हेयर फॉल तक एक ही है सोल्यूशन, कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर फरीदाबाद, जिन्हें है 35 सालों का आयुर्वेदा एक्सपीरियंस और जहां होती है हर दर्द की छुट्टी। यहां मिलती है अभ्यंगम थेरेपी, चार हाथों से की जाने वाली वॉर्म ऑयल थेरेपी जो स्ट्रेस को मेल्ट करे और स्किन को ग्लो दे, पोटली थेरेपी, वॉर्म हर्बल पोटली मसाज जो मसल पेन और स्टिफनेस को करे वैनिश, शिरोधरा थेरेपी, वॉर्म ऑयल का जेंटल स्ट्रीम जो माइंड को रीसेट करे और आपको दे सुकून की नींद।
5: और सिर्फ यही नहीं, दे ऑल्सो स्पेशलाइज इन पंचकर्मा ट्रीटमेंट, वेट लॉस मैनेजमेंट, पेन मैनेजमेंट, स्किन डिसऑर्डर्स, हाइपरटेंशन एंड ब्लड शुगर।
6: तो आप टेंशन किस बात की, जुड़े कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर से, हाउस नंबर 409 सेक्टर 15 नियर गेट नंबर 3 फरीदाबाद हरियाणा। और अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9650680900 और पाएं 25% का डिस्काउंट। सो कम एंड ज्वाइन कायरेली आयुर्वेदिक सेंटर एंड टेक अ डीप ब्रीथ।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों बात करते हैं सिनेमा के गलियार से काजल अग्रवाल और श्रेयस तलपड़े की फिल्म द इंजन स्टोरी, जिसका ट्रेलर और उसके सोशल मैसेज वाले एंगल को खूब सराहा गया। ट्रेलर सीधे फिल्म के सीन्स पर नहीं बल्कि इन्फो कार्ड्स, न्यूज फुटेज और हार्ड हिटिंग विजुअल्स पर बनी है, ताकि फूड एडल्ट्रेशन और पेस्टिसाइड क्राइसिस भी गंभीरता से सबके सामने आए। जहां इस फिल्म की कहानी को कोर्टरूम ड्रामा है, जिसमें श्रेयस तलपड़े का किरदार अपनी बेटी के ना रहने के बाद पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज कराने की कोशिश, और यहीं से शुरू होती है कहानी। फिल्म में काजल और श्रेयस के अलावा त्रिशा सरदा, मुरली शर्मा और मनीष वधवा भी मौजूद है। जहां ये कहानी की अगर बात की जाए तो रिलीज होते सारे हिंदी तमिल तेलुगु में रिलीज किया गया और अच्छा खासा प्यार बटोरती नजर आई ये कहानी। बाकी चर्चाएं होती रहेंगी, उससे पहले एक और खूब

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद।
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुनो

इसी गाने के साथ आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ हम बात कर रहे हैं ओटीटी राउंडअप के बारे में, जहाँ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आप मुसाफिर कैफे, आदर्श बाल विद्यालय, पाली चंदाबी, स्टार्ट फेल्स टू सेव द यूनिवर्स जैसी कहानियों का लुत्फ उठा सकते हैं। मुसाफिर कैफे की बात करें तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पर विक्रम मैसी और वेदिका पिंचो महिमा मकवाना की रोमांटिक ड्रामा सीरीज आदर्श बाल विद्यालय, जहां ये कहानी के गए मैनन अर्चना पूरन सिंह और नवीन कस्तूरिया वाली 7 एपिसोड कॉमेडी ड्रामा सीरीज है। पाली चातंबी, इसकी बात की जाए स्टार्ट फॉल्स टू सेव द यूनिवर्स की, उसी दिन स्ट्रीम हुई जहां दोनों कहानी आपस में क्लैश होती हुई नजर आई। लेकिन इस वक्त ओटीटी प्लेटफॉर्म सबसे ज्यादा धमाल जो मचा रही है मुसाफिर कैफे। मुसाफिर कैफे एक ऐसी सीरीज जहां बेहतरीन इमोशनल रिलेशनशिप ट्रैक दिखाया गया है। तो उसके बाद अगला नंबर है आदर्श बाल विद्यालय का। आपको कौन सी कहानी लगी अच्छी बताइएगा जरूर हमारे व्हाट्सएप नंबर 6548968968 पर। बाकी चर्चा उतरेंगे उस पर रिकॉर्ड ट्रैक।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम बेमिसाल, तुम लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

0: सर आपका KYC अपडेट करना है, मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टेक्स्ट, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
3: कुछ हटके।
4: चाय सिर्फ जुबान ही नहीं बल्कि दिलों को छू जाती है। होती तो सिर्फ एक कप है पर बातें दिल खोल कर हो जाती हैं।
5: पुराने दोस्त और भूले बिसरे किस्से, हंस टी स्टॉल की चाय जब भी पियो रिश्तों में नए जायके घोल जाती है।
6: यारों का 48 साल पुराना चाय का अड्डा, सुबह 5 बजे से रात 8 बजे तक, हंस टी स्टॉल, गोपी कॉलोनी चौक, ऋषि मार्केट, नियर लक्ष्मी नारायण मंदिर।
7: ए जय माता जी, माता जी ने हम कहीं ने कहूँ के वाह फरे वादल फरे वायरो फरे, पर एक बार बोलिया पछी मारे मित्रों, आ मित्रों कदी ना फरे के हाँ।

रिकॉर्ड हिट्स या अनरिलीज्ड जेम्स। फिल्मी फ्लेवर में आरजे मोनिक आपको सुनाएंगे हर फिल्मी किस्सा ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: Batgirl!
1: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
2: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
1: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
3: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ दोस्तों अब हम बात करते हैं सिनेमा के गलियारे से, जहाँ उस प्लेटफॉर्म पर ऑपरेशन सफेद सागर का ट्रेलर रिलीज हुआ, जहाँ कारगिल वॉर बेस्ड एयरफोर्स की कहानी को दिखाया गया। ट्रेलर 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इंडियन एयरफोर्स के मिशन, खासकर गोल्डन एरोज स्क्वाड्रन की भूमिका को सामने लाता। इसमें सिद्धार्थ और जेमी शेखली फ्रंटलाइन ऑफिसर्स के रूप में दिखते हैं, जबकि अभय वर्मा, दिया मिर्जा, प्रजक्ता कोहली, आदिल हुसैन, मिहिर आहूजा, तरुक रैना, अर्दा भसीन और अमृता बागची अनसीन कास्ट। ट्रेलर का टॉनिक इंटेंस है, पेट्रियोटिक और मिशन ड्रिवन, जिसे वर्ल्ड हाईएस्ट एयर ऑपरेशन जैसी हाई रिस्क सेटिंग दिखाई गई। ये सीरीज आईएफ के उस अनटोल्ड चैप्टर पर बेस्ड है जो ऑपरेशन सफेद सागर कहा गया, यानी कारगिल युद्ध में भारतीय वायुसेना की निर्णायक और साहसी भूमिका को सबके सामने लाया। रियल लाइफ ऑफिसर्स और मिशन प्लानिंग के इर्द-गिर्द घूमती कहानी इसलिए इसे एक मिलिट्री ड्रामा के साथ ह्यूमन इमोशंस वाली वॉर स्टोरी के रूप में पेश किया गया। कहानी 7 अगस्त को ये सीरीज जो है आने वाली है, इंतजार रहेगा इसके रिलीजिंग का। बाकी ऐसी अभी चर्चाएं लेकर के आता रहूंगा सिनेमा के गलियारों से, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जन

इसी गाने के साथ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे शो में, यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहां बात करते हैं इस वक्त सिनेमा के गलियारे से हनुमान अंश के बारे में, जहां इसका ट्रेलर आया और जब बात की जाए फिल्म नीम करोली बाबा के जीवन और आध्यात्मिक यात्रा पर बेस्ड, और ट्रेलर में आस्था, सेवा और भक्ति का सफर दिखाया गया। शुरुआत 1930 के नॉर्थ इंडिया से होती है, जहां एक घबराए हुआ शख्स एसएचओ से कहता है कि भूत दिखा है। इसके बाद बाबा के रूप में शोभिना और सत्या का परिचय होता। आगे एक दृश्य, बाबा को चलती ट्रेन से नीचे उतार दिया जाता है और उसी के बाद ट्रेन रुक जाती है। यह ट्रेलर का सबसे चर्चित स्पिरिचुअल मैथिक मोमेंट है। बात करें ट्रेलर बाबा की उस सीख पर फोकस करता है जिसमें ये कहते हैं कि भगवान को सोने का चढ़ावा नहीं बल्कि भक्तों के लिए प्रसाद और भूखों के लिए भोजन चाहिए। इसमें उनके अनुयायियों का बढ़ना, लोगों की आस्था और अंत में उनके विदा लेने का भावनात्मक हिस्सा भी दिखाया गया। फिल्म 31 जुलाई को आने वाली स्पिरिचुअल ड्रामा, इसका इंतजार बेसब्री से किया जा रहा है। बाकी ऐसी चर्चा करता रहूंगा, उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: 89.6 FM.
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं.
3: कुछ हटके.
4: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस. कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था.
5: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश.
4: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया.
6: प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है.
4: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया.
6: आवारा हूँ, आवारा.
4: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है. तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग सुनना ना भूले. सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM. कुछ हटके.

0: यानी साथ आप सभी का स्वागत है मेरे शो में यानी कि फिल्मी फ्लेवर। फिल्मी टॉनिक आज जो मौनिक और अब यहाँ वक्त हो चला है सिनेमा के कैलेंडर का, जहाँ आज बड़े सेलिब्रेट कर रहे हैं इंडस्ट्री एक बेहतरीन स्टार। आज बड़े है उस आवाज का जिसे सुनते ही दिल को सुकून मिलता है। वही बात करेगी ऐसी आवाज जिसे रोमांस को भी सुर दिए, दर्द को भी एहसास दिए और भक्ति को भी एक नई पहचान। 90 से लेकर आज तक हर जनरेशन की प्लेलिस्ट में अगर ये सिंगर का नाम लगातार बना है तो वो नाम है सोनू निगम। आज बात कर रहे हैं इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री के सबसे वर्सटाइल सिंगर्स में से एक का, जो आज बर्थडे भी है इनका और सोनू निगम का हैप्पी वाला बर्थडे। तो इनसे जुड़ी बहुत सी किस्से कहानी, इनके गाने, इनके बेहतरीन सॉन्ग्स जो प्लेलिस्ट में एडिट रहते हैं, उन सबकी चर्चाएं आज करने वाला हूं। जहां आपको बताऊं कि सोनू निगम ने बहुत छोटी उम्र से ही सिंगिंग शुरू कर दी और बात करें वहीं पे, वो अपने पिता के साथ स्टेज शोज में गाते थे और धीरे धीरे मुंबई की रुख किया। शुरुआती दौर में उन्होंने काफी संघर्ष किया, लेकिन उनकी मेहनत और सुरों पर पकड़ ने उन्हें प्लेबैक सिंगिंग का सुपरस्टार बना दिया। टीवी सिंगर रियलिटी शो सारेगामपा का होस्ट करने के बाद उनकी पॉपुलरिटी और भी बढ़ गई और फिर बॉलीवुड में उन्हें एक के बाद एक सुपरहिट गाने दिया। उनके बारे में ऐसी और भी चर्चाएं करता रहूंगा, लेकिन उससे पहले एक और खूबसूरत सा ट्रैक।
1: कह दूं तुम्हें
2: हाँ
1: या चुप रहूं
2: ना,
1: दिल में मेरे आज क्या है
2: क्या है

मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ पाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

0: तो देखने दो,
1: जल भी रहे हैं।
0: अरे तो जलने दो,
1: खुली सड़क है बाबा।
0: तो क्या हुआ भाई?
1: हाँ तो हट जाए
0: हो जाए।

इसी गाने के साथ एक बार फिर से लौट आया हूँ लेकर के शो यानी कि फिल्मी फ्लेवर। यहाँ बात कर रहे हैं सोनू निगम की, जहाँ सोनू निगम ने हर मूड के लिए यादगार गाने दिए। कल हो ना हो, अभी मुझ में कहीं संदेशे आते हैं, सूरज हुआ मध्यम, मैं अगर कहूँ। उन्होंने हिंदी के अलावा कन्नड़, बंगाली, मराठी, तेलुगु, तमिल और कई सारी लैंग्वेजेस में गाने गाए। उनकी वर्सेटिलिटी ही उनकी हर जनरेशन का फेवरेट सिंगर बना दिया। सोनू निगम को अक्सर मॉडर्न एरा के मोहम्मद रफ़ी के रूप में भी सराहा जाता है। उनकी लाइव सिंगिंग और स्टेज परफॉर्मेंस आज भी ऑडियंस को मंत्रमुग्ध कर देती है। कई फिल्म फेयर अवार्ड्स और अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान के नाम हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमाई है करोड़ों के फैंस का प्यार। एक बार फिर से हैप्पी वाला बर्थडे सोनू निगम को। बाकी ऐसी भी चर्चा होती रहेंगी लेकिन आज नहीं, उससे मुलाकात होगी कल के दिन सेम टाइम सेम जगह। तब तो सुन रहे रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
1: इंटरनेट मीडिया अकाउंट या मोबाइल फोन पे पैसे की मांग पर भरोसा ना करें। किसी भी मैसेंजर ऐप पर अनजान वीडियो कॉल से सावधान रहें।
0: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा

0: सुनना सुनना।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आग मेरी लड़ी है। अरे

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के हैं।
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

कभी कभी एक सिंपल स्माइल पूरी कंट्री को याद रह जाती है, और यामी गौतम की कहानी वही स्माइल से शुरू होती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं नेशनल क्रश यामी गौतम की। हिमाचल की एक सीधी सादी लड़की, ना लाउड लॉन्च ना सुपरस्टार सरनेम, बस एक काम फेस, नेचुरल ब्यूटी और कैमरा फ्रेंडली इनोसेंस। शुरुआत हुई टीवी सीरियल से, स्मॉल स्क्रीन स्मॉल रोल्स, लेकिन फिर एक एड आई और पूरा इंडिया सडनली पूछने लगा ये लड़की है कौन। फेयरनेस क्रीम का वो एड यामी गौतम को घर घर फेमस कर गया। आयरनी देखो, इंडस्ट्री ने उन्हें पहले ब्यूटी के लिए नोटिस किया, लेकिन आगे जाके वही लड़की अपनी एक्टिंग से सबको सरप्राइज करने वाली थी। यामी गौतम पहले स्क्रीन पर पिटी लगी, फिर धीरे धीरे पावरफुल लगने लगी, और कैसे हुई उनकी एक परफेक्ट बिगनिंग, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: ओ चलती कुड़ी, ओ चलती कुड़ी।

नीतू झट नू पसंद होगी, गर्मी च ठंड होगी, मैं तेरा चॉकलेट तू मेरी खंड होगी, मैं भी मलंग होया तू भी मलंग होगी, तिरछी नजर तेरी आशकाली पंग होगी।

बॉलीवुड में डेब्यू सब करते हैं, लेकिन कुछ लोग पहली फिल्म में ही फ्रेश एयर जैसे फील होते हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। साल था 2012, फिल्म आई विक्की डोनर। आयुष्मान खुराना के अपोजिट एक सिंपल बंगाली गर्ल आशिमा रॉय। नो ओवर एक्टिंग, नो ड्रामेटिक हीरोइन एनर्जी, बस नेचुरल परफॉर्मेंस, और ऑडियंस को वही पसंद आया। यामी उस एरा की टिपिकल ग्लैमरस हीरोइन नहीं लग रही थी, वो रियल लग रही थी। सॉफ्ट वॉइस, सिंपल एक्सप्रेशंस और एक वार्म्थ। फिल्म हिट हुई, क्रिटिक्स ने नोटिस किया, सबको लगा बॉलीवुड को एक फ्रेश एक्ट्रेस मिल गई है। उन्होंने एंट्री ग्लैमरस नहीं ली, कंफर्ट से मारी थी। और फिर कैसे मिला उनको प्रिटी फेस का लेबल, करेंगे इसके बारे में आगे भी बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सभी के लिए ये गाना, आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

बॉलीवुड की सबसे डेंजरस हैबिट है, और वो है कि अगर एक्ट्रेस खूबसूरत हो तो लोग अज्यूम कर लेते हैं कि बस इसकी खूबसूरती इसका टैलेंट है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम बात कर रहे हैं यामी गौतम की। यामी गौतम के साथ भी सेम यही हुआ, उन्हें रिपीटेडली ब्यूटीफुल हीरोइन कैटेगरी में डाल दिया गया। फिल्म आई, सॉन्ग्स हिट हुए, लेकिन उनके रोल्स ऑफन लिमिटेड रहे, कभी लव इंटरेस्ट, कभी सपोर्टिंग प्रेजेंस। और धीरे धीरे लोग उनकी एक्टिंग की जगह उनकी अपीयरेंस की बात ज़्यादा करने लगे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या है, यामी कभी डेस्परेट नहीं दिखी, ना अननेसेसरी कॉन्ट्रोवर्सी, ना अटेंशन सीकिंग बिहेवियर। वो क्वाइटली काम करती रही और शायद अंदर ही अंदर वेट कर रही थी एक ऐसे रोल का जहां वो सिर्फ प्रिटी नहीं परफॉर्मर भी प्रूव हो सके। इंडस्ट्री उन्हें ब्यूटीफुल बोलती रही और वो साइलेंटली बेटर एक्ट्रेस बनती रही। और कैसे आया उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट, करेंगे इसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: जानी ये स्विच है, बिजली बचाने के लिए इसे ऑफ करना पड़ता है।
1: You're killing again. Oh, dude, watch out.

बॉलीवुड में हर एक्टर के करियर में एक मोमेंट आता है जहां ऑडियंस सडनली रियलाइज करती है, ओह ये तो सीरियसली एक्टिंग कर सकती है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज कामयाबी की उड़ान में हम लोग बात कर रहे हैं यामी गौतम की। और यामी गौतम के लिए भी ये मोमेंट आया था, और ये मोमेंट था फ्रॉम द मूवी अ थर्सडे। नो ग्लैमरस हीरोइन रोल, नो डांसिंग सॉन्ग्स, बस एक इंटेंस वुमेन होल्डिंग अ सिटी हॉस्टेज। और यामी कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म थी, वॉइस, एक्सप्रेशंस, स्क्रीन प्रेजेंस, सब कुछ अलग था। ऑडियंस शॉक हो गई थी, ये वही यामी गौतम है? सबके मन में यही सवाल था। और वही एक्टर की बिगेस्ट विक्ट्री होती है जब ऑडियंस आपको दोबारा डिस्कवर करे। उसके बाद आर्टिकल 370 जैसी फिल्म्स ने भी प्रूव किया कि यामी सिर्फ स्क्रीन डेकोरेशन नहीं है, वो पूरी की पूरी फिल्म कैरी कर सकती है। उन्होंने लाउड कमबैक नहीं किया, उन्होंने परसेप्शन चेंज कर दिया। और इसीलिए कभी कभार ऐसा लगता है कि यामी गौतम डिफरेंट है, और वो डिफरेंट क्यों है करेंगे इसके बारे में बात, मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

आज के टाइम में जहां हर सेलिब्रिटी कॉन्स्टेंटली विजिबल रहना चाहता है, यामी गौतम का काम रहना ही उनकी इंडिविजुअलिटी बन गई। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ, एंड आप सुन रहे हैं कामयाबी की उड़ान। और आज हम कामयाबी की उड़ान में बात कर रहे हैं यामी गौतम की। यामी गौतम ने इंडस्ट्री को चेज नहीं किया, उन्होंने बस कंसिस्टेंटली काम किया और धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज किया कभी कभी साइलेंस भी स्पॉटलाइट बन सकती है। वो उन एक्ट्रेसेस में से नहीं है जो हर वक्त हेडलाइंस में ही रहना चाहती हैं, लेकिन जब भी स्क्रीन पर आती हैं ऑडियंस उन्हें सीरियसली लेती है, और यही पहचान होती है एक अच्छे एक्टर की। ना डेली ड्रामा, ना फेक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी, उनकी वाइब ही अलग है। वो अप्रोचेबल लगती हैं, ग्राउंडेड लगती है, और स्क्रीन पर भी वो ओवर परफॉर्म नहीं करती, इसीलिए उनके इमोशनल सीन्स बिलीवेबल लगते हैं। यामी गौतम का करियर एक इंटरेस्टिंग रिमाइंडर है, कभी कभी स्लो ग्रोथ भी पावरफुल होती है। हर एक्टर को ओवरनाइट स्टारडम नहीं मिलता, कुछ लोग ग्रेजुअली ऑडियंस का रिस्पेक्ट अर्न करते हैं, और यामी उन्हीं एक्टर्स में से एक हैं। आज जब वो स्क्रीन पर आती हैं तो सिर्फ प्रिटी नहीं लगती, कॉन्फिडेंट लगती हैं, कंट्रोल्ड लगती हैं, कंप्लीट एक्ट्रेस लगती हैं। यामी गौतम ने इंडस्ट्री को चेज नहीं किया, उन्होंने बस कंसिस्टेंटली काम किया और धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज कर दिया कि कभी कभी साइलेंस भी स्पॉटलाइट बन जाता है। तो ये थी कहानी यामी गौतम की। आपको ये पूरी की पूरी कामयाबी की उड़ान की कहानी कैसी लगी बताइएगा जरूर। नंबर है हमारा 9654896896। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलूंगा आप सभी से दोबारा 5 से 8 सोमवार से शुक्रवार शाम को अपने शो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए और सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

गाना है फ्रॉम द मूवी लव आजकल और इसी गाने के साथ स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं हूँ गीत। और आज फिर से एक और कहानी लेकर आई हूँ, एक बिजनेस टाइकून की कहानी जहाँ सक्सेस की चमक के पीछे छुपी होती है एक लंबी थका देने वाली कहानी। सोचिए एक बच्चा सिर्फ 4 साल का जिसकी जिंदगी एक डिजीज की वजह से रुक जाती है। डॉक्टर बोल देते हैं नीचे का हिस्सा जिंदगी भर काम नहीं करेगा। बचपन से ही बैसाखियों का सहारा, लोगों की सिंपैथी और सोसाइटी का एक फिक्स लेवल, ये ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। लेकिन ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल की नहीं है, ये कहानी है सपने देखने की, हिम्मत करने की। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान की जो कभी फोटोकॉपी मशीन के सामने बैठकर दिन गिन रहे थे और आज जिनका बिजनेस हजारों करोड़ के आसपास घूम चुका है। आज जब एक रिटेल ब्रांड सिक्योरिटी गार्ड की जॉब एड की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है, मीम्स बन रहे हैं, तब शायद हमें ये भी पूछना चाहिए इस ब्रांड के पीछे का दर्द क्या था, इस सफलता के पीछे का गिरना कितना गहरा था। पर अभी मैं आपको गाना सुनाने वाली हूँ, गाने के बाद फिर से लौटूंगी और बताऊंगी इनकी कहानी आपको, जिनका नाम जानते ही आप तो कहने वाले हैं ओह ये इनकी कहानी है। तो वक्त है गाने का, गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी।

0: महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

वेलकम अगेन टू बिजनेस अनप्लग्ड। मैं हूँ गीत और अभी थोड़ी ही देर पहले मैंने आपसे एक कहानी की बात की थी, एक बच्चा, एक डिसेबिलिटी और एक सपना जिसका एंड किसी को नहीं पता था। अब वक्त आ गया है उस कहानी के सेंट्रल कैरेक्टर से आपको मिलाने का। नाम है रामचंद्र अग्रवाल और शायद आप ये नाम पहले ना जानते हो, लेकिन जो ब्रांड इन्होंने बनाया उसे आपने जरूर देखा होगा। मोहल्ले के पास, बस स्टैंड के सामने या हाईवे के कॉर्नर पर विशाल मेगा मार्ट। आज विशाल मेगा मार्ट सिक्योरिटी गार्ड के एक जॉब एड की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। लोग मीम्स बना रहे हैं, क्वालिफिकेशंस पर हंसी उड़ा रहे हैं, पर जब हम सिर्फ मीम देखते हैं हम कहानी भूल जाते हैं। रामचंद्र अग्रवाल की कहानी सिर्फ एक फाउंडर की कहानी नहीं है, ये एक सिस्टम के खिलाफ चलने वाले आदमी की कहानी है। एक ऐसा इंसान जिसे बचपन में ही बता दिया गया था तुम नॉर्मल लाइफ नहीं जी पाओगे, लेकिन उन्होंने नॉर्मल लाइफ का डेफिनेशन खुद लिखा। न सिंपैथी चाहिए, न शॉर्टकट्स, बस एक चीज, अपना काम। और वही सोच आगे जाकर विशाल मेगा मार्ट जैसे मास रिटेल मॉडल की फाउंडेशन बनी। तो अभी हम इनके बचपन में डाइव करने वाले हैं, इनकी फैमिली के बारे में बातें करेंगे और मेंटल स्ट्रेंथ की बात करेंगे जो इन्होंने स्कूल के दिनों में डेवलप की थी। वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

Once again, welcome back. You are listening to Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हटके शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं आपके साथ गीत हूँ. कभी कभी कहानी का सबसे स्ट्रॉन्ग हिस्सा सक्सेस वाला नहीं होता, वो होता है बचपन. रामचंद्र अग्रवाल जो कि विशाल मेगा मार्ट के फाउंडर थे, रामचंद्र अग्रवाल का बचपन नॉर्मल नहीं था. 4 साल की उम्र में पोलियो ने इनकी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दी थी. डॉक्टर ने साफ कहा नीचे का हिस्सा काम नहीं करेगा और इस एक सेंटेंस का मतलब था ना दौड़ ना खेल ना नॉर्मल स्कूल लाइफ. बैसाखियों के साथ चलना, लोगों की नजरों का बोझ उठाना और हर रोज खुद को समझाना मैं कम नहीं हूँ. फैमिली सिंपल थी, मिडिल क्लास, ज्यादा पैसा नहीं, लेकिन एक चीज थी, इज्जत. इनके पेरेंट्स ने कभी इन्हें ये फील नहीं होने दिया कि वो किसी से कम है. एक्सपेक्टेशंस क्लियर थी, पढ़ना है, समझना है और अपनी जगह खुद बनानी है. स्कूल के दिन इनके लिए मेंटल ट्रेनिंग जैसे थे. हर छोटी चीज मेहनत मांगती थी, बेंच तक पहुंचना, स्टेयर्स चढ़ना, असेंबली अटेंड करना और इसी स्ट्रगल ने इनके अंदर एक चीज डेवलप की, पेशेंस. एडुकेशन पूरी की, डिग्री ली, फिर जॉब. पर ऑफिस के हर दिन के साथ इनके अंदर एक सवाल ग्रो होता गया, क्या मैं जिंदगी भर किसी और के अंडर काम कर पाऊंगा. और इस प्रॉब्लम के साथ जॉब मिलना बहुत मुश्किल था और जॉब छोड़ देना लोगों को बेवकूफी लगता था. पर रामचंद्र अग्रवाल को अंदर से पता था मुझे अपना काम करना है. और फिर आया उनका पहला कदम, छोटा सा, रिस्की सा और एक फोटोकॉपी मशीन के साथ शुरू हुआ ये सफर. और ये सफर क्या था ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन इस गाने के बाद. गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड.

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

Once again, welcome back. You are listening to Radio Maharani 89.6 FM. कुछ हटके शो है Business Unplugged. मैं बात कर रही हूँ विशाल मेगा मार्ट के फाउंडर रामचंद्र अग्रवाल की, जिन्होंने एक छोटे से फोटो कॉपी शॉप उधार के पैसे से ली, कोई गारंटी नहीं. रोज सुबह दुकान खोलना, मशीन का शोर और शाम को गिनती, कितना कमाया कितना बचाया. एक साल तक ये सिलसिला चला, पैसे आ रहे थे लेकिन दिल नहीं लग रहा था. रामचंद्र अग्रवाल को समझ आ गया था सिर्फ काम चलाना मेरा गोल नहीं है. फिर इन्होंने सॉफ्ट ड्रिंक्स का बिजनेस ट्राई किया, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, मार्जिन सब समझना, लेकिन नतीजा लॉस. यहाँ बहुत लोग रुक जाते हैं, कह देते हैं बिजनेस मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन उन्होंने एक चीज सीख ली थी, फेलियर फीडबैक होता है. उसके बाद फैब्रिक बिजनेस, कपड़ों का काम, रिटेल की रियल अंडरस्टैंडिंग यहीं से आई, कस्टमर का बिहेवियर, प्राइस सेंसिटिविटी और स्टॉक मैनेजमेंट. 15 साल कलकत्ता में ग्राइंड, दिन रात का काम, और फिर भी अंदर एक आवाज थी, अगर इतना कर लिया है तो कुछ बड़ा क्यों ना करें. और फिर लिया गया एक सबसे डेयरिंग डिसीजन, सब छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना, एक नया शहर, जीरो सपोर्ट. और अभी उसी सपोर्ट के बारे में बात करूंगी, लेकिन गाना सुन लेते हैं. गाने के बाद फिर से लौटूंगी. शो है बिजनेस अनप्लग्ड.

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वैसे ही अगर हमने अभी कदम नहीं उठाए तो प्रदूषण को काबू करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गाड़ियों का कम इस्तेमाल करें, पौधे लगाएं और अपने आसपास साफ सफाई का ध्यान रखें, वरना इस डॉन को पकड़ना सच में नामुमकिन हो जाएगा।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

जिंदगी में बस यही काम डाउन रहना बहुत जरूरी है। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड और मैं बात कर रही हूँ विशाल मेगामार्ट के फाउंडर रामचंद्र अग्रवाल की। दिल्ली में इन्होंने देखा मिडिल क्लास को ऑप्शंस चाहिए पर अफोर्डेबल, मॉल कल्चर एलीट के लिए था। इन्होंने सोचा व्हाई नॉट मास रिटेल। यहीं से विशाल मेगामार्ट का आइडिया निकला, स्टोर खुला, रिस्पॉन्स मिला और फिर एक के बाद एक स्टोर। टीम बनाना इजी नहीं था, लोग डाउट करते थे पर रामचंद्र अग्रवाल का विजन क्लियर था। सिटीज जुड़ती गई, स्टोर्स बनते गए, 414 सिटीज, 2007 आईपीओ, 2000 करोड़ वैल्यूएशन, मीडिया कवरेज, सक्सेस का नशा और यहीं से कहानी का सबसे डेंजरस फेज शुरू होता है। फास्ट एक्सपेंशन, गलत फाइनेंशियल डिसीजन और फिर 2008 का मार्केट क्रैश, लोन का प्रेशर 750 करोड़, सिस्टम हिल गया, कंपनी गिरने लगी। 2011 में वो मोमेंट आया जब इन्होंने अपनी ही बनाई हुई कंपनी को 70 करोड़ में बेच दिया। सोचिए, ये बिजनेस लॉस नहीं था, ये आइडेंटिटी का लॉस था। यहीं पर ज्यादा कहानियां खत्म हो जाती हैं लेकिन रामचंद्र अग्रवाल की नहीं। और कैसे इन्होंने कमबैक किया ये मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटूंगी। शो है बिजनेस अनप्लग्ड।

0: अपना KYC अपडेट करना है। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, उस पर क्लिक कीजिए, वरना आपका अकाउंट और ATM दोनों ही बंद हो जाएगा।
1: बट मेरा KYC तो ऑलरेडी अपडेटेड।
2: सावधान, अनजाने कॉल्स, फर्जी टैक्स, लिंक और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे सावधान तो नहीं होगा नुकसान। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है बिजनेस अनप्लग्ड, मैं गीत हूँ। और कभी कभी जिंदगी हमें वहाँ ले जाकर खड़ा कर देती है जहाँ से सिर्फ दो रास्ते दिखते हैं, या तो चुपचाप एक्सेप्ट कर लिया जाए या फिर खुद को दोबारा डिफाइन किया जाए। रामचंद्र अग्रवाल के लिए विशाल मेगामार्ट को बचाना सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, वो एक इमोशनल सर्जरी थी। सोचिए, जिस ब्रांड को आपने अपनी सोच से, अपनी मेहनत से, अपनी पहचान से बनाया हो, उसे खुद अपने हाथों से छोड़ देना, 70 करोड़ में कंपनी बेचना, नंबर्स के हिसाब से लॉस था, लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस था वो था आइडेंटिटी का। लोग जो कल तक आपको रिटेल किंग कह रहे थे, आज चुप थे। फोन कम बजने लगे, मीटिंग्स खत्म होने लगी। यहीं पर ज्यादातर लोग खुद को खत्म मान लेते हैं, लेकिन रामचंद्र अग्रवाल ने खुद से एक सवाल पूछा, मेरे पास क्या नहीं बचा? जवाब आया, पैसे नहीं बचे, ब्रांड नहीं बचा, पर एक्सपीरियंस जिंदा है और एक्सपीरियंस सबसे महंगा एसेट होता है। इन्होंने रियलाइज किया कि विशाल का डाउनफॉल का रीजन आइडिया नहीं था, एग्जीक्यूशन का ओवर कॉन्फिडेंस था। इस बार अप्रोच बदली, इस बार ग्रोथ स्लो रखी, इस बार नंबर से पहले डिसिप्लिन आया और वहीं से शुरू हुआ V2 रिटेल। नया नाम, नया स्ट्रक्चर, पर वही कोर अंडरस्टैंडिंग, इंडियन मिडिल क्लास। नो फ्लैशी ड्रीम, सिर्फ सस्टेनेबल बिजनेस, स्टोर बाय स्टोर, सिटी बाय सिटी, कंट्रोल ग्रोथ। आज V2 रिटेल स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है और आज उसकी मार्केट वैल्यू 6,500 करोड़ से ज्यादा। पर इस कहानी का सबसे पावरफुल पार्ट ये नंबर नहीं है, पावरफुल पार्ट ये है कि एक आदमी जो बचपन से बैसाखियों के साथ चला, जो जिंदगी भर लोगों के डाउट्स उठाता रहा, जो एक बार सब कुछ खो चुका था, उसने फिर से खुद को खड़ा किया। और यहीं से नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ा लेसन निकलता है, फेलियर आपको डिफाइन नहीं करता, आप फेलियर को कैसे हैंडल करते हो वो आपको डिफाइन करता है। अगर आप अपना स्टार्टअप ब्रांड करने के बारे में सोच रहे हो और अगर आप लोन, प्रेशर, सेल्फ डाउट से घिरे हो, तो रामचंद्र अग्रवाल की कहानी आपको एक बात याद दिलाती है, एंड तब होता है जब आप खुद मान लेते हो। डिसेबिलिटी एक्सक्यूज नहीं होती, बैकग्राउंड लिमिटेशन नहीं होती और एज कभी बैरियर नहीं होती। बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट का गेम नहीं होता, बिजनेस पेशेंस, सेल्फ बिलीव और लॉन्ग विजन का टेस्ट होता है। आज विशाल मेगामार्ट का नाम शायद नए लोग चला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे की सोच अभी भी जिंदा है। और V2 रिटेल सिर्फ एक कमबैक नहीं था, ये एक स्टेटमेंट है, मैं गिरा था पर खत्म नहीं हुआ था। और इसी थॉट के साथ मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे थे बिजनेस अनप्लग्ड, और जहाँ कहानियाँ सिर्फ सक्सेस की नहीं होती, दोबारा खड़े होने की होती है। याद रखिए, अगर आप जिंदा हैं तो आपका बिजनेस ड्रीम भी जिंदा है। और मिलूंगी आपसे एक नई कहानी के साथ। आप सुनते रहें रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके। कीप स्माइलिंग एंड कीप ग्रोइंग।

क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है गर्मियों में कि फ्रिज का पानी पिया हो पर फिर भी दिल को सुकून ना मिला हो, और फिर किसी ने एक मिट्टी के मटके से स्टील के ग्लास में पानी दिया हो, ना तो आइस ना कूलिंग बटन, फिर भी पहला घूंट ही सीधा रूह तक उतर गया हो। वो कहा है कि जो सुकून मिट्टी की ठंडक में होता है वो शीशे की ठंडी बॉटल्स में कहा। और इसी के साथ रेडियो महारानी 89.6 FM पर मैं हूँ आपकी दोस्त आरजे अंजलि, और शो लेकर आ गई हूँ कल्चर कारवा, जहाँ आज बात होगी एक ऐसी चीज की जो सिंपल भी है, साइंटिफिक भी और इमोशनल भी, यानी मटका। बात करें मटके की तो आइए पहले ये जानते हैं आखिर कितना पुराना है ये मटका। कोई मॉडर्न इनोवेशन नहीं, इंडिया में हजारों सालों से मिट्टी के बर्तन यूज होते हुए आए हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक्सकवेशन में भी मिट्टी के पॉट्स और वाटर वेसल्स मिले हैं। अब सोचिए जरा, जब ना फ्रिज था ना इलेक्ट्रिसिटी, तब ये सारी चीजें आखिर आई कहां से? तब इंसान ने मिट्टी में ही कूलिंग सिस्टम ढूंढ लिया। वो कहते हैं ना, नेचर के सबसे बड़े इनोवेशंस अक्सर नेचर से ही आता है। और इसी के साथ वापस आकर जानेंगे आखिर मटका पानी ठंडा कैसे करता है। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM। मिलता है इस म्यूजिक ब्रेक के बाद।

0: अरे भाई इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज बात कर रहे हैं उस जादुई मटके की, जहां पानी अपने आप ठंडा हो जाता है। तो आइए चलिए जानते हैं आखिरकार मटका पानी ठंडा कैसे करता है। अब जरा इसके पीछे का साइंस जानिए। मटका मिट्टी का बना होता है और मिट्टी में होते हैं छोटे छोटे पोरस। उन छोटे छोटे होल से थोड़ा थोड़ा पानी बाहर आता है और बस धीरे धीरे हवा के कांटेक्ट में इवोपरेट होता है, और बस इस इवोपरेशन प्रोसेस की वजह से अंदर का पानी नेचुरल कूल हो जाता है। मतलब मटका इलेक्ट्रिसिटी से नहीं, नेचर के साइंस से चलता है। वो कहा है कि जो चीजें कुदरत के करीब होती हैं वो अक्सर सेहत के भी करीब होती हैं, और इसीलिए गर्मियों का असली हीरो कहा जाता है मटके को। एक टाइम हुआ करता था जब हर घर के कोने में मटका होता था, उसके नीचे छोटा सा स्टैंड, ऊपर एक स्टील का ग्लास और बार बार मम्मी की आवाज, फ्रिज का नहीं मटके का पानी पियो, क्योंकि मटके का पानी सिर्फ ठंडा नहीं होता, सॉफ्ट और अर्थी भी होता है। जैसे उसमें मिट्टी की खुशबू घुल गई है। और मटके के पीछे का ना एक बहुत ही प्यारा कनेक्शन है, वो है कुमार और मिट्टी का रिश्ता। इस कनेक्शन के बारे में भी जानेंगे, लेकिन वापस आकर तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: जिंदगी के भी ना कुछ रूल्स होते हैं, जिन्हें अगर फॉलो नहीं किया तो सीधे डिटेंशन। लेन डिसिप्लिन तो मेंटेन करना इज अ मस्ट। राइट का मतलब राइट, लेफ्ट का मतलब लेफ्ट। इतना भी रॉकेट साइंस नहीं है मेरी जान। बाइक पे दबंगगिरी करने से कूल तो बहुत लगते हैं, बट अगर यही दबंगगिरी तुम्हारी नेक्स्ट हॉस्पिटल ब्लॉक का रीजन बन गया ना, तो पूरा स्वैग टपरी का चाय बन जाएगा। और हाँ, हेलमेट हमेशा ऑन, सीट बेल्ट हमेशा टाइट, वरना मोए मोए मोमेंट तो गारंटीड है बाबू मोशाय। और अगर रील स्क्रॉल या सेल्फी लेने का ज्यादा ही मन कर रहा है तो साइड में रोक कर करो। याद रखो, रोड रूल्स फॉलो करोगे तो टेंशन फ्री और मस्त राइड गारंटीड है।
0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
2: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
1: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजी और आज हम बात कर रहे हैं मिट्टी के मटके के बारे में, जहां सबसे खास रिश्ता है कुम्हार और मिट्टी का रिश्ता। मटका सिर्फ एक वेसल नहीं, एक आर्ट है और इस आर्ट के पीछे होते हैं आर्टिस्ट, जिन्हें कहते हैं कुम्हार। वो लोग जो मिट्टी को शेप देकर रोजमर्रा की जिंदगी में सुकून भर देते हैं। एक सिंपल सा मटका बनाने के लिए भी मिट्टी चुनना, उसे गूंदना, चाक पर शेप देना और धूप में सुखाना पड़ता है। कहते हैं कुछ लोग मिट्टी से सिर्फ बर्तन नहीं, कल्चर बनाते हैं और इसलिए मटका और इंडिया कल्चर बहुत पुराना है। इंडिया में मटका सिर्फ पानी रखने के लिए नहीं था, सर्दियों में फेस्टिवल्स में और रिलीजियस रिचुअल्स में भी मटके का स्पेशल इम्पोर्टेंस रहा है। कई जगह तो मटका प्रॉस्पेरिटी और लाइफ का सिंबल माना जाता है, क्योंकि पानी और मिट्टी दोनों ही जीवन के बेस हैं। वो कहा है कि जिस मिट्टी से हम बने हैं, शायद सुकून भी उसी में छुपा होता है। अब वापस आकर जानेंगे फ्रिज वर्सेस मटके की जंग। तब तक बने रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा, पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

89.6 FM पर आप सुन रहे हैं कल्चर कारवा। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे अंजलि और आज हम बात कर रहे हैं मटके के बारे में। तो चलिए फिर जानते हैं फ्रिज वर्सेस मटका। अगर बात करें फ्रिज की तो फ्रिज आज हर घर में है, पर फिर भी समर आते ही लोग मटका खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रिज पानी को आइस कूल करता है पर मटका उसे जीता हुआ रखता है। मटके का पानी ना ज्यादा ठंडा ना शॉक देने वाला, बस परफेक्ट। और हेल्थ एक्सपर्ट्स भी कहते हैं कि एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर बॉडी के लिए आइडियल नहीं होता, और यही रीजन है मटका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, समर मेमोरीज है। दोपहर की गर्मी, कूलर की आवाज, आंगन और मटके के पास रखा ग्लास। कभी कभी लगता है पुरानी गर्मियां ज्यादा खूबसूरत थी, शायद इसलिए क्योंकि तब चीजें नेचुरल थी और वक्त भी थोड़ा धीरे चलता था। वो कहा है कि पुराने गर्मियों में एसी कम थे पर सुकून ज्यादा था। मटका हमें एक सिंपल सी बात सिखाता है कि सिंपलिसिटी कभी आउटडेटेड नहीं होती, और कुछ चीजें टेक्नोलॉजी से नहीं ट्रेडिशन से बेटर चलती हैं। वो कहा है कि ना बैटरी चाहिए ना बटन का सहारा। मिट्टी का मटका आज भी गर्मी को हरा देता है, जो जुड़ा हो जमीन से वही असली सुकून देता है। अगली बार गर्मी लगे तो एक ग्लास मटके का पानी जरूर पीना, हो सकता है ठंडक सिर्फ गले तक नहीं यादों तक पहुंच जाए। और इसी के साथ अब मेरा वक्त हो गया है यहाँ से जाने का। कल फिर से मिलेंगे एक और सिंपल सी चीज में छुपी एक बड़ी कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। This is your RJ Anjali signing off.

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न की ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
3: डियर आप दुनिया के सबसे खूबसूरत इंसान हो। लोगों के कुछ भी कह देने से खुद को कमजोर मत समझ लेना,
4: कमाल तुम, बेमिसाल तुम, लाजवाब हो।
3: क्योंकि आप क्या हो वो सिर्फ आप जानते हो। सो बी

0: 89.6 FM
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: तो आप बोलना
1: आपको बताइएगा।
2: आपने ये बुला दिया था?
1: क्या तू मिट्टी दा बंदा मैं तो क्या।

शाम का वक्त हो और एक अदरक वाली चाय मिल जाए, कितना अच्छा लगता है ना। नहीं नहीं, मौसम अच्छा हो जाता है, और मौसम तो अच्छा हो ही नहीं रहा है। सिर्फ और सिर्फ मंगलवार को हल्की फुल्की बौछार हुई, मतलब दिन में ठीक ठाक बारिश हुई थी, उसके बाद कोई चांस ही नहीं है बारिश का कहीं पर भी। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आज है थर्सडे, गुरुवार का दिन, और अभी मैं एक बात बोलना चाहूंगा। आज एक बुरी खबर मिली और साथ ही साथ एक बहुत ही एक्साइटिंग चीज देखने को मिली। बुरी खबर ये कि अजिंक्य रहाणे ने रिटायरमेंट घोषित कर दी है, करेंगे इसके बारे में बात। एंड एक और चीज, रामायण का ट्रेलर रिलीज हो गया, ब्रह्म मुहूर्त में ट्रेलर रिलीज किया गया था, और मुझे अब ये मूवी देखनी है, और साथ ही साथ स्पाइडरमैन भी तो रिलीज हुई आज। तो ये सारी चीजें आज हम करने वाले हैं बात। और देखो, मैं आ गया हूं ना, तो अगले 3 घंटों के लिए मेरे शो में होती है खूब सारी बातें। जो लोग नए नए जुड़े उनको बता देता हूँ, दिल्ली से लेकर फरीदाबाद तक, फरीदाबाद से रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं, हम लोग उस पर गहन रिसर्च करते हैं। नहीं नहीं, आप भी कुछ बात कर सकते हैं, मैं भी कुछ बात कर सकता हूँ, और अपनी आवाज़ यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। हो सकता है हमें कोई सुन रहा हो इस टाइम, तो मुझसे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं आप लोग बताता हूँ। नंबर है मेरा 9654896896, सिंपल सा नंबर है, इस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं आप लोग। एंड अभी एक और बात बोलना चाहता हूँ, वो ये कि इस शो में चलते हैं ढेर सारे गाने, मतलब बैक टू बैक गाने चलेंगे विद मिनिमम एड ब्रेक्स, ये मेरा वादा रहता है हमेशा। और आपको पता है क्या कि आपके जितने भी खर्चे होते हैं ना, उन सब के ऊपर नज़र रखने वाला है अब AI। कैसे? वो अब नज़र रखेगा और बोलेगा आप लोगों को, टिप्स देगा कि आप अपने खर्चे कैसे बचा सकते हैं। अगर आपकी पार्टी ज़्यादा होती है ना, तो सोच लो आप इस AI की नज़रिए से नहीं बच सकते। तो करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में बात। और अगर मुझसे बातें करनी है तो नंबर मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ, उसके अलावा रेडियो महारानी के इंस्टा हैंडल पर भी आके आप लोग मुझसे बातें कर सकते हैं। फिलहाल आप सभी के लिए एक गाना चला रहा हूँ रेडियो महारानी 89.6 पर। सुनिए इस गाने को, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जाए। सुन।

0: ए भाई दर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना ना गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

0: तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें।
2: किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
3: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

आपको क्या लगता है कि जो लोग चोरी करते हैं क्या वो लोग संस्कारी होते हैं या फिर नहीं? मैं बताता हूँ, वो लोग बहुत ज्यादा संस्कारी होते हैं। और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक वीडियो वायरल हुई है, उसको देखने के बाद मुझे ऐसा लगा यार ये क्या कर रहे हैं लड़के, क्या चोर बने करे तू। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है और हो सकता है आप लोगों ने भी देखा हो, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो मैं बता देता हूं वीडियो में है क्या। एक्चुअली चोर चोरी करते हुए दिख रहे हैं, बट ये किसी घर में चोरी नहीं कर रहे, ये किसी बैंक में चोरी नहीं कर रहे, ये चोरी कर रहे हैं मंदिर के अंदर। और मंदिर में लगी दान पेटी और उसमें से अंदर से सारे पैसे निकाल रहे थे, और उसके बाद जब वो नहीं निकले तो फिर इन्होंने सोचा चलो दान पेटी ही उठा के ले चलते हैं। 28 जुलाई का ये मामला है, रात की करीब 2:20 पर ये पूरा का पूरा हुआ, सीसीटीवी कैमरे में कैप्चर हो गई ये वीडियो। अब इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये लड़का संस्कारी था, इसने पहले हाथ जोड़े, माफ़ी मांगी, कान पकड़े और फिर उसके बाद दोनों लड़कों ने मिलकर दान पेटी का ताला खोलने की कोशिश की, मगर नहीं हुआ तो फिर उठाकर ही ले गए दान पेटी। और बता दूं आपको, पिछले एक साल में इसी मंदिर से तीसरी बार चोरी हुई है, तो ये एक अलग पैटर्न देखने को मिला है। और यहाँ पर इस चोर ने जब कान पकड़े, माफ़ी मांगी, तो लोग कमेंट भी यही कर रहे हैं, कह रहे देखो कितना संस्कारी चोर है। कुछ लोग वही कमेंट कर रहे बाबूराव वाले स्टाइल में, क्या चोर बनेगा रे तू, क्या गुंडा बनेगा रे तू। तो बस एक सिंपल सी बात ये है कि देखो चोरी भले उसने करी बट उसको पछतावा भी है कहीं ना कहीं, और इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। सबसे पहली बात मैं बता दूं आप लोगों को कि कहीं बोलोगे तू जस्टिफाई कर रहा है, नहीं कर रहा मैं जस्टिफाई, मैं बस ये बोलना चाहता हूं कि हाँ ये इंसान संस्कारी था, गिल्ट हो रहा होगा इसको, तो ऐसी हरकतें तो नहीं करनी चाहिए थी ना। चलिए खैर, इस पर आप लोगों की कोई ना कोई राय जरूर होगी, इंस्टाग्राम पे आके दे सकते हैं, रेडियो महारानी के नाम से हमें ढूंढिए। और अभी फिलहाल इस गाने को एंजॉय कीजिए, जो बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है उसको थोड़ा सा लाउड कर दे।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

0: अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू, तो अर्ज किया है।
0: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ, तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद,
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके,
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार, उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है, और ऊपर से तू भी। मैं तो चली, तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा, सुन।

क्या आप लोगों के भी खर्चे बढ़ गए हैं? क्योंकि देखो मेरे तो खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अगर आपको नहीं पता चल रहा ना कितने खर्चे हो गए हैं, तो एक काम कीजिए, अपना पेटीएम ऐप खोलिए, उसमें जाके बैलेंस चेक कीजिए। बैलेंस के नीचे ही आ जाएगा कि इस महीने आपने कितने रुपये खर्च कर दिए हैं। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा आप सभी के साथ। कोई जाए तो ले आए, जाए अगर कोई भी तो मेरे लिए भी कुछ लेकर आ जाना, ऐसा हम लोग कहते ना। बट यहाँ पर गूगल लेकर आया हमारे लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़। एक्चुअली गूगल पे यूज़ करते हो आप लोग, तो वो एक नया AI असिस्टेंट ले आया है। अब ये AI असिस्टेंट है, वो सारे यूज़र्स की ना जो ट्रांजेक्शन हिस्ट्री है उसको आप लोगों को स्क्रॉल नहीं करना पड़ेगा। तो ये AI एक चैटबॉट है, इससे आप बातें कर सकते हो और आप बातचीत करके अपने खर्चों को ट्रैक कर सकते हो। सोचो आप लोगों ने इससे सिर्फ एक चीज़ सवाल पूछनी है कि बताओ भाई मेरे पिछले महीने फ्यूल में कितना रुपए खर्च हुए, तो वो खुद बता देगा आपको। और आप बोलोगे मेरे बाहर खाने में कितने रुपए खर्च हुए, वो सब बता देगा आपको। और फिर उसके साथ साथ पर्सनलाइज्ड इनसाइट्स भी देगा, और साथ में जो पैसे बचाने के सुझाव होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, वो भी देने में मदद करेगा गूगल पे का ये जो नया चैटबॉट आया है, बेसिकली जेमिनी AI है। आप लोगों को पता है AI कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो वही ये काम कर रहा है। और अभी बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए ये बस हम लोगों की पूरी ट्रांजेक्शन हिस्ट्री को एक बार में एक मिनट के अंदर आप सभी के सामने पेश कर सकता है। तो है ना ये कमाल की चीज़, लाइक आप लोगों के खर्चे कम हो जाएंगे। वैसे मैं एक बात बोलूं कि जब सैलरी आती है ना तो खर्चे ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं, और जैसे ही जेब में पैसे नहीं बचते, मंथ एंड वैसे ही चल रहा है, तो उस टाइम तो फिर खर्चे अपने आप कम हो जाते हैं। मानते हो कि नहीं, इसके ऊपर भी कुछ करना पड़ेगा। मगर उससे पहले आप सभी के लिए गाना चलाता हूँ, ब्राउन मुंडे ये गाना सुनिए। इस गाने को रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं बस यूं गया और यूं आया।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: अरे आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुना भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक गिलास तो पीती जा। सुन

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हो गया शुरू तो अर्ज किया है।
0: ओहो अर्ज होता है अर्ज।
1: कर रहा हूँ तुम सुन लिया करो बस।
0: इरशाद
1: आगे खाली हो जाएगी।
0: क्या
1: बोल कर ये सारी भीड़ अंदर बुला लेते हैं।
0: कौन है?
1: रोडवेज वाले।
0: ओके ओके।
1: रोडवेज वाले भैया सीट पर चार सवारी तो अपनी गोदी में भी तीन बच्चे बिठा लेते हैं।
0: अरे हाँ यार उस दिन तो लोरी गाकर सुला भी रहे थे।
1: क्या बात कर रहे
0: हो? हाँ।
1: आगे सुनो।
0: सुनाओ।
1: रोडवेज की शक्तियों का हम करते हैं कुछ इस तरह इस्तेमाल। लस्सी बनाने के लिए रोडवेज में दही लेकर बैठ जाते हैं।
0: वैसे दिमाग का दही हो रखा है और ऊपर से तू भी। मैं तो चली तू बोलता रहा।
1: अरे एक ग्लास तो पीती जा। सुन

क्या आप लोगों को पता है मंथ एंड चल रहा है? नहीं नहीं ये तो पता ही होगा, बट ये मंथ एंड थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्यों है? क्योंकि आईटीआर भरने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई, और जिन्होंने नहीं भरा है प्लीज भर लीजिए फटाफट। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। देखो काफी बार ऐसा होता है कि हम लोग सोचते हैं कि हमारी तो इनकम ही नहीं है तो हम लोग आईटीआर क्यों भरे। अरे भरना चाहिए आप लोगों को आईटीआर, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। मैं बताऊँ कैसे फायदा होता है। देखो अगर आपका TDS कट रहा है तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी वापस, और टैक्स रिफंड भी अगर आपको लेना है वो भी इसके थ्रू हो जाएगा। मतलब TDS वही बेसिकली वही चीज़ है। बट यहाँ पर ना आपको कल को जितने भी आपके लोन्स हैं, आपको क्रेडिट कार्ड चाहिए, आपका सिबिल स्कोर है, वो सब चीज़ें इम्प्रूव हो जाएगी। तो देखो जो पहले की व्यवस्था थी, पहले का जो इनकम टैक्स का सिस्टम था, स्लैब जो था वो 4 लाख से ऊपर वाले लोगों को देना पड़ता था, फिर उसके बाद 5 हुआ, फिर 7 हुआ, फिर 12 हो चुका है। तो अगर आपकी ईयरली इनकम 12 लाख है और आप लोग सोच रहे हो कि हमें तो टैक्स देना ही नहीं है, नहीं देना तो निल आईटीआर भर दो, लेकिन भरिएगा ज़रूर, क्योंकि इससे ना सरकार को पता चलता है कि आपके पास कितने पैसे आ रहे हैं और आपके साथ कुछ गलत ना हो जाए इसलिए। और देखो आईटीआर नहीं भरने से क्या हो सकता है, देखो लेट फीस भी लग सकती है। अगर आप लोग निल नहीं भर रहे हैं, अगर आपके पास आपकी इनकम जो है वो एक टैक्स स्लैब के अंदर आती है, तो अगर आप लेट भरेंगे आईटीआर तो लेट फीस लगेगी, फिर उसके बाद जो टैक्स बचेगा उस पर ब्याज भी लगेगा, और फिर टैक्स बेनिफिट में भी नुकसान मिलेगा क्योंकि टैक्स बेनिफिट्स मिल नहीं पाएंगे आप लोगों को। तो ये सब चीज़ों के बारे में सोचिए ज़रा, और अभी फ़िलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव बातें लेकर आते रहता हूँ। और हाँ, अगर कोई कहीं भी जा रहा है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि हम सब मिलकर हाथ जोड़कर बस इंद्रदेव से प्रार्थना करते हैं कि बारिश हो जाए, थोड़ी सी हल्की फुल्की हो जाए, बट हो जाए। मौसम ये उमस वाला है ना, झेला नहीं जा रहा है, मानते हो कि नहीं। चलिए अभी फिलहाल रेडियो महारानी आप लोग सुनते जाइए, मेरा फेवरेट वाला गाना आप सभी के लिए 89.6 रेडियो महारानी पर।

0: पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

क्या आप लोगों को पता है जो आज मूवी रिलीज हुई है स्पाइडरमैन, उसका सीधा नाता है हरियाणा से। नहीं नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ऐसा सच में है। स्वागत है आप सभी का फिर से रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एक्चुअली मैं ये हरियाणा से नाता है वो इसलिए है क्योंकि एक हरियाणवी गाने को लिया गया है जस्ट टू शो पीटर पार्कर्स हार्ट ब्रेक, क्योंकि उसका दिल तो टूटा है। अगर आप लोग स्पाइडरमैन के पूरे यूनिवर्स को फॉलो करते हो तो आप लोगों को पता होगा कि लास्ट मूवी में स्पाइडरमैन सारी चीज़ें भूल गया था, मतलब स्पाइडरमैन ने सबको भुलवा दिया था कि वही पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और फिर उसके बाद उसके फ्रेंड्स तक उसको नहीं पहचान रहे थे। तो वही उसका हार्ट ब्रेक दिखाने के लिए हरियाणवी गाना यूज़ किया गया है जिसका नाम है बरसात, और ये गाया है बंजारे ने। बंजारे वही है जिन्होंने बैरन गाना गाया था, और वही गाना अब यूज़ किया जा रहा है इस फिल्म में। और बेसिकली मैं बता दूं आप लोगों को ये क्यों यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इंडियन ऑडियंस का भी तो ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करना है, क्योंकि जो लोग स्पाइडरमैन को फॉलो करते हैं वो तो देखेंगे ही, बट जो लोग नहीं करते हैं वो लोग भी तो एक बार को इंडियन गाना सुनकर ज़रूर फॉलो करेंगे। और ये अगर आपको गाना सुनना है तो आप लोग यूट्यूब पर जाके भी इसको सुन सकते हैं, बरसात एक्स स्पाइडरमैन के नाम से आप सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। और आज जब ये मूवी रिलीज़ हुई ब्रांड न्यू डे, मतलब स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, तो इसके साथ साथ एक और चीज़ रिलीज़ करी गई, यानी कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त तो पता होगा आप लोगों को, 4:15 बजे। क्या थी वो चीज़ जो आज सुबह सुबह 4:15 बजे रिलीज़ की गई है, करेंगे उसके बारे में बात मगर इस गाने के बाद। रेडियो महारानी 89.6 पर मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। आपके लिए ये मिक्स मैशअप गाना ओनली ऑन 89.6 FM। कुछ

0: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
1: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
2: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूँ। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
3: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

आज सुबह 4:15 बजे जब सारी दुनिया सो रही थी, तब उस टाइम एक चीज रिलीज हो रही थी और उसे कहते हैं रामायण का ट्रेलर। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। सुबह 4:15 बजे ब्रह्म मुहूर्त में रामायण का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया। इसमें सबको पता है कि मेन लीड में भगवान श्री राम का कैरेक्टर निभा रहे हैं रणबीर कपूर और साथ में हैं

साई पल्लवी। बट यहाँ पर एक रोल मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है जिससे ट्रेलर शुरुआत हुई है, और वो है यश, सुपरस्टार यश मैं बोलना चाहूँगा, साउथ इंडियन सुपरस्टार यश, जो KGF में आप लोगों ने देखा, जिन्हें अब वो एज अ रावण इसमें दिखाई दे रहे हैं। एंड सीरियसली गूज बम्स आ गए थे जैसे ही मैंने उनको एंट्री करते हुए देखा। और फिर उसके साथ साथ एक चीज़ इस पूरे ट्रेलर में मिसिंग थी, एंड दैट वॉज भगवान हनुमान। आई डोंट नो वाई, मुझे ऐसा लगता है कि उनका एक और ट्रेलर रिलीज किया जाएगा रामायण मूवी का, और फिर उसके बाद उसमें हनुमान जी को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। सभी लोग कह रहे हैं कि हमारे वन एंड ओनली सनी देओल एंग्री यंग मैन बोले या जो भी बोलें गुस्से वाले, वो हनुमान जी का रोल प्ले कर रहे हैं, और मुझे लगता है उनको एक स्पेशल इंट्रो तो बनता है, मतलब उनका एक स्पेशल इंट्रो ज़रूर बनता है। तो देखते हैं ये मूवी कैसी जाएगी, दिवाली में आने वाली ये मूवी, और 4 मिनट का ये ट्रेलर है, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर देखिएगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी आप ये ट्रेलर देखोगे ना तो ना हेडफोन्स लगा के देखना, क्योंकि एक अलग ही फील आएगा, अलग ही वाइब आएगी, और गूज बम्स गारंटीड है। और बाकी मैं इसमें अगर बात करूँ इस फिल्म की, तो इस फिल्म को ना बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था जब एक टीज़र लॉन्च हुआ था, मगर जैसे ही टीज़र में गलतियां पकड़ी लोगों ने, फिर उसके बाद इसमें काफ़ी सारी चीज़ें चेंज कर दी गई, और AI की मदद से जो भी चीज़ें लगाई गई थी वो भी चीज़ें हटा दी गई है, और ग्राफिक्स का अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। तो कमेंट सेक्शन अभी फुल ऑफ लव भरा हुआ है, अब हेट का कब होगा ये तो नहीं पता, पर मुझे लगता है लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है इस मूवी से, और एक्सपेक्टेशंस पर ये मूवी खरी भी उतरेगी। चलिए अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए धुरंधर 2 मूवी के 2 गाने मिक्स मैशअप में, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हट

स्टार्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

मोहम्मद सिर्फ शहंशाह नहीं, रॉयल वाइब्स लेने वाले लोग भी रह सकते हैं। तो जब भी अपनी शाही सवारी में सड़क पे निकले, सीट बेल्ट के कवच को जरूर पहने, तभी तो आएगा लाइफ में किंग वाला ट्विस्ट।

क्या आप लोगों को मालूम है एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हो गया है। और ऐसा वैसा भी नहीं, मतलब बहुत ही ज़्यादा बड़ा फ्रॉड होता है, और ये होता है आपके क्रेडिट कार्ड के थ्रू। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड मंडा, आप सभी के साथ शाम हो रही है। और ये जो गाना था तू आके देख ले, एक्चुअली मैं हम लोगों को ना काफ़ी लोगों को बताना पड़ेगा कि तू आके देख ले भाई कि ऐसे भी फ्रॉड्स होते हैं, क्योंकि मैं बहुत बार समझाता हूँ। एक्चुअली मैं जो क्रेडिट कार्ड है आप लोगों का, उसकी पेमेंट करने का ऑप्शन आता है। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, ऑब्वियसली बात है उसकी पेमेंट भी करेंगे, तो काफ़ी बार हम लोग थर्ड पार्टी ऐप्स यूज़ कर लेते हैं। हम लोग कोई और ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और उसके थ्रू हम लोग क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर देते हैं। हम सोचते हैं चलो इससे फ़ायदा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बट वहाँ से आपकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स लीक हो सकती है, और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोगों को सबसे पहले चीज़ है क्या करनी है, क्रेडिट कार्ड आप जिस भी कंपनी से ले रहे हैं उसका एक ऐप डाउनलोड कीजिए, और उसके ऐप में आप लोग कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा दीजिए, जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में आपका क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं हो सकता। दूसरा, आप ऑनलाइन कुछ भी खरीदने के लिए उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा दीजिए, जब आपको खरीदना तब ऑन कर दीजिएगा, डिसेबल और एनेबल करने का ऑप्शन मिलता है आप लोगों को। तो ये दो चीज़ें ऑप्शंस आप जब ऑन कर लोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। अब इस एक्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, उनका नाम है कीर्ति कुल्हाड़ी, पिंक फिल्म में आपने देखा होगा इन्हें, और इनके साथ भी यही हुआ है कि इनके क्रेडिट कार्ड का यूज़ किया गया है विदेश में, 2.5 लाख रुपए इनके क्रेडिट कार्ड से स्वाइप कर दिए गए। तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने क्रेडिट कार्ड को संभाल के रखिए, और उसकी पेमेंट करते हैं तो अपने बैंक अकाउंट से ही कीजिए। और अभी फिलहाल रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए के बाजी की आवाज़ में ये गाना।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

स्टॉल्स पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब। अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते। जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते। वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता। और ये गाना कभी नहीं बन पाता। रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना। जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है। रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

कितना दी मशीन बैड बॉय ऑन द ट्रैक बेबी करे बाउंस जैसे हेटरों के चेक सर पे है क्राउन बेबी नो कैप सिक मेरी ट्रिप मेरी सिक वो कैप बच्चे बच्चे घोराटे मेरा रैप।

0: है बादशाह
1: करनौजला Let's go.
2: साल 2020 में जिन्होंने गाबा टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया को विजय दिलवाई थी एज अ कप्तान, आज उस शख्स ने रिटायरमेंट ले लिया। और मुझे मेरे मन में बार बार सवाल आ रहा था कि टीम इंडिया में ओडीआई में भी उन्हें नहीं लिया जा रहा, T20I में भी उन्हें नहीं लिया जा रहा और साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेट में भी नहीं लिया जा रहा, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ उनका नाम है अजिंक्य रहाणे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। और अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी जितने भी फॉर्मेट्स थे उन सबसे संन्यास की घोषणा कर दी है, एक इमोशनल वीडियो शेयर किया और सिर्फ इतना सा लिखा कि जिंदगी की हकीकत है हर चीज़ का अंत होता है और जब समय आता है तो बस इसका सम्मान करना होगा, और इन्होंने बस ये टाइटल डाला और वीडियो शेयर कर दी। एक्चुअली मैं बता दूं आप लोगों को कि काफ़ी सारे इनके फैंस हैं वो हार्ट ब्रोकन है क्योंकि इनको बहुत टाइम से मौका नहीं मिला था। और अगर बात करें इनके परफॉर्मेंस की तो टोटल 85 टेस्ट मैच खेले इन्होंने जिसमें 5000 रन बनाए, और उसके अलावा 90 वनडे मैचेस खेले हैं जिसमें 2900 रन बनाए, और अगर मैं T20I की बात करूं तो 20 T20I खेले हैं जिसमें 375 रन बनाए। अभी सवाल ये है कि क्या अजिंक्य रहाणे हम लोगों को IPL में खेलते हुए दिखेंगे भी या फिर नहीं, क्योंकि मैं तो देखना चाहता हूँ अभी इन्हें और खेलता हुआ। अभी एज ही क्या है यार, 38 ईयर्स के अजिंक्य रहाणे और रिटायरमेंट ले लिया है। बट वी विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर द नियर फ्यूचर, और इसी के साथ साथ रेडियो महारानी की टीम की तरफ से थैंक यू सो मच अजिंक्य। अगर कोई भी मेरी बात आवाज़ सुन रहा है तो उन तक पहुँचाइएगा ज़रूर, क्योंकि उन्होंने टीम इंडिया को एक ऐसी विजय दिलाई थी जो आज तक किसी को भी नहीं मिली। और अभी फिलहाल आप लोग रेडियो महारानी सुनते जाइए, आप सभी के लिए ये गाना 89.6 पर।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

टीम इंडिया कल 10वें स्थान पर थी तो आज है 8th पे। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर। मैं हूं द मोस्ट वांटेड बंडा आप सभी के साथ। कॉमनवेल्थ गेम्स ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं और कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरी इंडियन। इंडिया ने 3 गोल्ड मेडल्स जीत लिए हैं और 8वें स्थान पर इंडिया अभी भी मौजूद है और यहाँ पर 9 सिल्वर मेडल है इंडिया के पास और 3 ब्रॉन्ज है और फिर उसके साथ साथ हमारी टोटल मेडल टैली होगी 15। बट यहाँ पर हम लोग सिर्फ 15 मेडल से इतना ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बट काफ़ी सारी टीम्स ऐसी हैं जिसमें से एक नाइजीरियन टीम है जो 5वें नंबर पर खेल रही है 7 गोल्ड के साथ। तो मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ पर हम लोग पीछे हैं ना, वो इसलिए है क्योंकि हम लोग बचपन से एक बात सुनते आए थे, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब। बच्चे अगर पार्क में खेलते तो अंकल आंटी उन्हें डांटते हैं और फिर उसके बाद उम्मीद करते हैं कि बच्चे गोल्ड मेडल लेकर आएंगे। नो डाउट अभी टीम इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, 8th पोजीशन पर है। कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं, इसके बाद एशियन गेम्स भी आएंगे और फिर उसके बाद आएगा ओलंपिक्स। तो ओलंपिक्स में देखा जाएगा कि टीम इंडिया कैसा परफॉर्म करती है, क्योंकि इस बार ओलंपिक्स के लिए टीम इंडिया बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रही है। और मैं एक और बात बोलना चाहूँगा यहाँ पे कि अभी पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया है, सेकेंड नंबर पर कनाडा, तीसरे नंबर पर इंग्लैंड, चौथे पे स्कॉटलैंड, पाँचवें पे नाइजीरिया, छठे पे साउथ अफ्रीका और सातवें पे है मलेशिया।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: तेरे प्यार का तो पता नहीं, पर तेरे साथ इस स्कैम के चर्चे हर जबान पर हैं।
1: तो मैं क्या करता यार, उसने इतनी चलाकी से कॉन्फ्रेंस कॉल का झांसा देकर ओटीपी निकाल लिया, मुझे पता ही नहीं चला।
0: अरे भाई, स्मार्ट होने के साथ साथ अवेयर भी बन, और आप सभी भी इन बातों का खास ध्यान रखें। किसी भी अनजान नंबर या लालच भरे मैसेज के साथ आए लिंक पर क्लिक ना करें। बैंक कभी भी ओटीपी नहीं मांगता, इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए कॉल पर भरोसा ना करें। मजबूत पासवर्ड बनाएं और पब्लिक वाईफाई के इस्तेमाल से बचें। हर वीडियो और ऑडियो सच नहीं होती, इसलिए पहले फैक्ट्स को क्रॉस चेक करें और फिर शेयर करें।
2: और जुड़े साइबर सिपाही कैंपेन से, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM। तो अब से बी सेफ, बी अवेयर।

मौसम विभाग का कहना है कि पिछले पूरे एक हफ्ते से फरीदाबाद में बारिश हो रही है, बट वी ऑल नो कि कितनी ही बारिश हो रही है। सुबह सुबह चांसेस थे 60% बारिश के, और जो शाम हो गई है तो चांसेस रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 30%। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड भंडा आप सभी के साथ। एंड आज का टेम्परेचर मैक्सिमम 35 डिग्री तक गया, बट इट वॉज फीलिंग एज ए 44 डिग्री सेल्सियस। एंड कल की अगर मैं बात करूं तो कल भी बारिश के कोई चांस नहीं है, मतलब मैक्सिमम चांसेस 30-40% ही है। और शनिवार को बोल रहे हैं कि इस बार बारिश हो ही जाएगी, और मैं प्रे कर रहा हूं कि प्लीज़ बारिश हो जाए, क्योंकि ये जो उमस वाला मौसम है ना, ये नहीं झेला जा रहा है। और अगर बारिश आती है तो हम लोगों की कुछ जिम्मेदारियाँ होंगी। जिम्मेदारियाँ ये होंगी कि हम लोगों को कहीं पर भी जमा हुआ पानी दिखता है तो उसको वहाँ जमा नहीं होने देना। पहले तो मतलब अपने घर की बात कर रहा हूँ कि घरों में अगर पानी जमा है आपके तो उसको जल्दी से साफ़ कर दीजिए, क्योंकि वहीं पर मच्छर अंडे दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। मलेरिया के केसेस बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ डेंगू के केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो ये सैटरडे और संडे बारिश के फुल चांसेस हैं। अब देखते हैं वीकेंड पर कितनी बारिश होगी भी या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। और अभी फिलहाल वक्त हो चुका है एक गाने का, तो गाना चला रहा हूँ तलविंदर की आवाज में। गाने का नाम है कातिलाना, सुनिए इस गाने को रेडियो महारानी पर, मैं हूँ द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता अर्ज, अर्ज
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद,
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों,
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है,
1: कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

अच्छा खासा घर में मोबाइल चलाते हुए बैठो तो एक आवाज आती है, आग लग जाए तेरे फोन को। और मुझे ऐसा लगता है ये आवाज आप लोगों के घर में भी आती ही होगी। बचपन में जब पढ़ते नहीं थे तब ये आवाज सुनने को मिलती थी, तब तो समझ भी आता था, बट अब तो जॉब कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, घर का लिए आलू धनिया पुदीना दही सब कुछ लेकर आ रहे हैं, फिर भी ये सुनने को मिलता है तब दिल दुखता है। स्वागत है आप सभी का रेडियो महारानी 89.6 पर, मैं हूं द मोस्ट वांटेड मुंडा आप सभी के साथ। एंड पता नहीं ये मेरे फ़ोन को कैसे पता चल जाता है कि मुझे भूख लग रही है, क्योंकि एकदम से नोटिफिकेशन आता है वो फूड डिलीवरी ऐप का, वो कहते हैं गौरव तुम्हें भूख लगी है चलो गोलगप्पे भिजवा देते हैं। मतलब आई डोंट नो हाउ उनको पता लग जाता है। और ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं होता, क्योंकि ये जब मैंने डिस्कस किया अपने ऑफिस कलीग से तो उन्होंने भी ऐसा ही बोला कि हाँ ये तो होता ही है कि हम लोगों के पास भी नोटिफिकेशन आती है। और जब भूख की बात आई गई है तो वक्त भी ऐसा हो चुका है कि इस टाइम अच्छे अच्छे को भूख लग जाती है, मतलब मेरा वक्त हो चुका है यहाँ से जाने का। मिलूंगा मैं आप सभी से कल शाम फिर से सेम टाइम सेम जगह। इसी वादे के साथ निकलता हूँ यहाँ से, वापस आएगी गीत वेद इश्क बाजियाँ प्यार भरी बातें लेकर। और मुझे ऐसा लगता है कभी कभार ना मैं एक दिन उसका शो ओवरटेक कर लूँगा, मतलब एक दिन ट्राई करेंगे आप लोगों से प्यार भरी बातें करने की कोशिश करेंगे, मगर वो किसी और दिन होगा। अभी आप सभी के लिए एक प्यारा वाला गाना जरूर चला देता हूँ जिसका नाम है पारो। सुनिए इस गाने को, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। दिस इज आरजे गौरव साइनिंग ऑफ फ्रॉम रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके पारो।

0: बॉयफ्रेंड हूँ इसलिए गुलाम हूँ।
1: सुन भाई सुरेंद्र।
2: हाँ भाई सुरेंद्र।
1: भाई गर्लफ्रेंड मुझे फोन करती है, अगर फोन भी दी जाए तो किससे बात कर रहे थे। सोचा था शॉपिंग कराने ले जाऊंगा, 500 रुपए का खर्चा करवाएगी, 5000 का बिल बनवा दिया। सुबह कहती है आई लव यू, दिन में कहती है तुम बदल गए, शाम होती कहती तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मैंने पूछा मैं तुम्हारा क्या हूँ, कहती है तुम मेरे सब कुछ हो। मैंने कहा सब कुछ में क्या आता है, कहती तुम मुझे ड्राइवर हो, तुम मेरे एटीएम हो, मतलब तो सिंपल यही हुआ ना कि मैं तो उसका गुलाम हूँ।
2: सही कह रहा तुरेंद्र, बॉयफ्रेंड कितना भी कर ले रहेगा तो गुलाम ही।

कितनी अजीब चीज है ना ये इश्क। कभी यही इश्क दुनिया की हमें सबसे खूबसूरत जगह पर ले जाता है और कभी यही इश्क हमें हमारी तन्हाइयों से मिलवा देता है। इश्क में सब कुछ बहुत गहरा हो जाता है, खुशी भी है, याद भी है और इंतजार भी है। हेलो हाय, आप सुन रहे हैं शो इश्क बाजियां और मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। रात हो चुकी है और घड़ी में 8 बज चुके हैं। दिन की भागदौड़ अब धीरे धीरे थम रही है, सड़कें थोड़ी शांत हो रही हैं और दिल अब अपने असली ख्यालों की तरफ लौटने लगा है। क्योंकि रात का समय ऐसा ही होता है, दिन में हम जितना भी खुद को बिजी रख लें, रात को कुछ यादें, कुछ चेहरे, कुछ बातें खामोशी से हमारे पास आकर खड़े हो जाते हैं। और शायद यही वजह है रात का ये समय इश्क को समझने के लिए सबसे सही होता है। तो चलिए इसी रात, इसी खामोशी और इन्हीं एहसासों के साथ शुरू करते हैं इश्क बाजियां का पहला सेगमेंट इश्क शायराना, जहां हम बात करते हैं उन शायरों की जिन्होंने मोहब्बत को सिर्फ महसूस नहीं किया बल्कि उसे शब्दों में ऐसे ढाला कि उनकी शायरी आज भी दिल तक सीधा पहुंच जाती है। और आज इश्क शायराना में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शायरा की जिनकी शायरी में मोहब्बत की नरमी भी है और जुदाई की चुप्पी भी। मैं बात कर रही हूँ परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात यही है कि वो इश्क को किसी कहानी की तरह नहीं लिखती, वो इश्क को जिंदगी की तरह लिखती है। जहाँ सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता, जहाँ लोग हमेशा साथ नहीं रहते, जहाँ कभी कभी मोहब्बत बस एक याद बनकर रह जाती है। उनकी गजल है जिसकी शुरुआत ही इतनी सच्ची है कि सुनने को लगता है जैसे किसी ने दिल की बात कह दी हो। वो लिखती है, अब भला छोड़ के घर क्या करते, शाम के वक्त सफर क्या करते। सोचिए जब दिल किसी के पास रह जाए तो इंसान कहीं और जाकर भी क्या करेगा। रास्ते चाहे कितने भी खुले क्यों ना हो, सफर तभी खूबसूरत लगता है जब कोई साथ चलने वाला हो। और अगर वही इंसान हमारे साथ ना हो तो फिर सच में शाम के वक्त सफर करने का मतलब क्या रह जाता है। और आगे लिखती है, तेरी मसरूफियतें जानते थे, अपने आने की खबर क्या करते। कितना गहरा एहसास है इसमें। कभी कभी हम किसी की जिंदगी में इतने धीरे धीरे शामिल हो जाते हैं कि हमें लगता है शायद हमारी मौजूदगी भी मायने रखती है, लेकिन फिर वही एहसास होता है कि सामने वाला इंसान हमारी नहीं अपनी ही दुनिया में मसरूफ है। और तब दिल चुपचाप अपने कदम पीछे खींच लेता है। ना कोई शिकायत है, ना कोई सवाल है, बस एक खामोशी। और शायद इसी खामोशी को परवीन शाकिर ने अपने एक और शेर में बहुत ही खूबसूरती से कहा है। वो मुसाफिर ही खुली धूप का था, साए फैला के शजर क्या करते। मतलब अगर कोई इंसान रुकने के लिए बना ही नहीं है, अगर वो एक मुसाफिर था तो फिर हम अपनी मोहब्बत की छांव फैलाकर भी उसे रोक कैसे लेते। कभी कभी जिंदगी में कुछ लोग बस मुसाफिर होते हैं, वो आते हैं हमारी दुनिया में, कुछ यादें छोड़ जाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। और हम काफी देर तक उन्हीं रास्तों को देखते रहते हैं जहां से वो गुजरा था। परवीन शाकिर की शायरी की खूबसूरती यही है, वो मोहब्बत को सिर्फ पाने की बात नहीं करती, वो मोहब्बत के बाद बच जाने वाली खामोशी की भी बात करती हैं। और शायद इसीलिए उनकी शायरी सुनते हुए हर इंसान को कहीं ना कहीं अपनी कहानी नजर आ ही जाती है। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। एक गाना सुनते हैं और वापस लौटेंगे इसी इश्क शायराना के सफर में परवीन शाकिर की कुछ और बातों के साथ।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: इंटरनेट एक बहुत ही क्यूट सा बिल्ला है, दूर से प्यारा पास जाके कभी कभी काट लेता है। अगर कोई मैसेज आए यू वन 50,000 तो समझ लो ये पैसा नहीं फसाया जा रहा है। ओटीपी मत देना, पासवर्ड मत बताना, और अगर कोई बोले मैं बैंक से बोल रहा हूँ तो बोलो बैंक से हो तो इंटरेस्ट बढ़ाओ, मेरा इंटरेस्ट मत घटाओ। ऑनलाइन मत फिसलिए वरना हैकर्स आपको डिजिटल गोलगप्पा बना देंगे।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

और ये था बहुत ही खूबसूरत गाना। रात की खामोशी में कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस सुनाई नहीं देते बल्कि महसूस होते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां और मैं हूं आपके साथ इश्क वाली गीत। और जैसे जैसे रात

छोटी छोटी मुलाकातों और दिल की हल्की सी कसक में ढूंढती हैं। उनकी एक बहुत ही खूबसूरत गजल है जिसका पहला ही शेर है, कुछ तो हवा भी सर्द थी, कुछ था तेरा ख्याल भी, दिल को खुशी के साथ साथ होता रहा मलाल भी। कितनी सच्ची बात है, कभी कभी जिंदगी में खुशी और उदासी एक साथ होती है। आप मुस्कुरा रहे होते हैं लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्की सी कमी रह जाती है, क्योंकि कुछ लोग हमारी खुशी का हिस्सा बन जाते हैं और जब वो साथ नहीं होते तो खुशी भी थोड़ी अधूरी सी लगती है। और वो आगे लिखती है, मेरी तलब था एक शख्स, वो जो नहीं मिला तो फिर हाथ दुआ से यूं गिरा, भूल गया सवाल भी। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने दिल की थकान लिख दी हो। जब हम किसी को बहुत चाह लेते हैं और वो हमें नहीं मिलता तो एक ऐसा वक्त भी आता है जब इंसान दुआ करना भी छोड़ देता है, क्योंकि उसे लगता है कि शायद किस्मत में अब वो नाम नहीं है। लेकिन परवीन शाकिर की शायरी की यही खूबसूरती है, वो मोहब्बत को शिकायत नहीं बनने देती, वो उसे एक याद बना देती है। ऐसी याद जिसमें कभी चांद की रोशनी होती है, कभी ठंडी हवा और कभी दिल की हल्की सी कसक। मैं हूँ गीत और आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, साइबर थ्रेट स्मॉल एक्शन से बड़ी प्रॉब्लम्स बना सकते हैं, सो बी सेफ, बी अलर्ट।

उसी खूबसूरत गाने के साथ फिर से स्वागत है। कभी कभी कुछ गाने ऐसे होते हैं जो बस कानों तक नहीं रुकते, सीधा दिल तक उतर जाते हैं। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी में सिर्फ इश्क मिल जाने की खुशी नहीं है, उसमें बिछड़ जाने की सच्चाई भी है और याद बनकर रह जाने का दर्द भी है। तो उनका एक और शेर मैं आपको सुनाती हूँ। वो लिखती है, वो तो खुशबू है हवाओं में बिखर जाएगा, मसला तो फूल का है, फूल किधर जाएगा। कितनी खूबसूरत बात है इसमें। कुछ लोग सच में खुशबू की तरह होते हैं, वो हमारी जिंदगी में आते हैं और फिर हवाओं में बिखर जाते हैं। लेकिन जो इंसान उनसे मोहब्बत कर बैठता है, उसके लिए सवाल ये नहीं है कि वो कहाँ गया, सवाल ये होता है कि अब वो खुद किधर जाए। वो आगे लिखती हैं, हम तो समझे थे कि एक जख्म है भर जाएगा, क्या खबर थी रगे जा में उतर जाएगा। कभी कभी हमें लगता है कि दिल पर लगा दर्द बस थोड़ा सा वक्त मांगता है, थोड़े दिन गुजरेंगे और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो सिर्फ दिल पर नहीं लगते बल्कि हमारी रूह में उतर जाते हैं, और फिर इंसान चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, उनकी याद कहीं ना कहीं हमारे साथ चलती रहती है। और फिर वो आगे लिखती है, वो जब आएगा तो फिर उसकी रिफाकत के लिए मौसम गुल मेरे आंगन में ठहर जाएगा। यानी दिल कहीं ना कहीं अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि अगर वो इंसान कभी लौट आया तो जिंदगी फिर से खूबसूरत हो जाएगी। कभी कभी इश्क यादों से ज्यादा उम्मीदों पर जिंदा रहता है, और शायद इसीलिए इंसान पूरी तरह अपने पसंदीदा इंसान को भूल नहीं पाता है। आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। हम गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: सब को सब नहीं मैं।
1: सदा सुरक्षित रहो, अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
2: सीट बेल्ट टाइट रखो, स्पीड ब्रेकर को इग्नोर करोगे तो फ्रैक्चर। रोड की लेन और इंटरनेट की चेन दोनों मत तोड़ना, एक छोटी सी गलती और सब आउट ऑफ कंट्रोल। और बस याद रखो, अलर्ट रहो, सिक्योर रहो और हर दिन को सेफ मोड पर चलाओ।

इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां, मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत, और ये हमारा बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है इश्क शायराना। हम बात कर रहे हैं परवीन शाकिर के बारे में। परवीन शाकिर की शायरी की सबसे खूबसूरत बात ये ही है कि वो मोहब्बत को सिर्फ शुरुआत से नहीं देखती, वो उसके बाद की खामोशी भी लिखती है। कभी जिंदगी में एक ऐसा मौसम आता है जब सब कुछ बहुत खूबसूरत लगता है, जैसे अचानक जिंदगी में बहुत गुलाब खिल गए हों, लेकिन वही मौसम जब गुजर जाता है तो उसकी याद भी धीरे धीरे दर्द बन जाती है। तो एक शेर है, सुनाती हूँ। गए मौसम में जो खिलते थे गुलाबों की तरह, दिल पे उतरेंगे वही ख्वाब अजाबों की तरह। यानी जो पल कभी बहुत खूबसूरत थे वही याद बनकर कभी कभी दिल को तकलीफ देते हैं, क्योंकि सच ये है कि इंसान यादों से भाग नहीं सकता, वो चाहकर भी कुछ चेहरों को, कुछ बातों को, कुछ लम्हों को भुला नहीं पाता। और फिर वो लिखती है, राग के ढेर पर अब रात बसर करनी है, जल चुके हैं मेरे खेमे मेरे ख्वाबों की तरह। ये शेर सुनकर लगता है जैसे किसी ने टूटे हुए सपनों की तस्वीर खींचती हो। हम अपने सपनों के साथ इतनी गहराई से जुड़ जाते हैं कि जब वो टूटते हैं तो सिर्फ सपना नहीं टूटता, हमारा एक हिस्सा भी टूट जाता है। लेकिन जिंदगी की अजीब बात यही है कि इंसान फिर भी जीता रहता है, वो राग के बीच भी एक नई सुबह ढूंढने की कोशिश करता है। और शायद इसीलिए मोहब्बत चाहे जितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, लोग उससे दूर नहीं भागते, क्योंकि मोहब्बत सिर्फ खुशी नहीं देती, वो इंसान को थोड़ा और गहरा बना देती है, मैच्योर बना देती है। मैं हूँ गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजियां। यहाँ पर वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही,
1: यह होगी साइबर क्राइम से जान।

सेफ्टी टिप्स सुन लो वरना आपकी लाइफ बन जाएगी एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी रील। रूल नंबर 1, जियो टैग मत लगाओ क्योंकि ये इंस्टा है जोमैटो नहीं। पासवर्ड यूनिक रखो, बर्थडे या लवर का नाम बिल्कुल नहीं, नहीं तो हैक होते ही तुम्हारी एस्थेटिक फीड बन जाएगी कॉमेडी कंटेंट। और हाँ, 2-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन कर लो नहीं तो नेक्स्ट स्टोरी होगी न्यू अकाउंट प्लीज फॉलो बैक। और भाई, स्ट्रेंजर्स को पिक्स मत भेजना, ये कोई शादी.com का फास्ट ट्रैक थोड़ी ना है। अननोन लिंक्स उस पे क्लिक करना मतलब वायरस को चाय पर बुलाना। तो इंस्टा यूज करो, मस्त रहो पर सिक्योरिटी के साथ, वरना वायरल तो हो जाओगे लेकिन ऑरा माइनस हो जाएगा।

यानी कि एक इंसान अगर साथ हो जाए तो ये पूरा जहां साथ हो जाए। इसी खूबसूरत से गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां। मैं आपके साथ हूँ इश्क वाली गीत। परवीन शाकिब की बात हो रही है, उनकी शायरी बहुत खूबसूरत है, ये तो मानना पड़ेगा कि वो इश्क को सिर्फ कहानी नहीं बनाती बल्कि उसे याद बना देती हैं। ऐसी याद जो कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती। कभी कभी हम सोचते हैं कि वक्त गुजरने के साथ सब कुछ पीछे छूट जाता है, लेकिन सच ये है कुछ रिश्ते जिंदगी से नहीं जाते, बस दिल के किसी कोने में चुपचाप रख दिए जाते हैं। तो उनका अगला शेर है, याद तो होंगी वो बातें तुझे अब भी, लेकिन शेल्फ में रखी हुई बंद किताबों की तरह। कितनी गहरी बात है इसमें। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम रोज याद नहीं करते, लेकिन हमें पता होता है कि वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर अभी भी मौजूद हैं, जैसे अलमारी में रखी कोई पुरानी किताब जिसे हम बार बार नहीं खोलते, लेकिन उसकी मौजूदगी हमें हमेशा पता होती है। और शायद यही वजह है कि मोहब्बत कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होती, वो बस अपनी जगह बदल देती है। पहले वो किसी इंसान में होती है और फिर धीरे धीरे वो यादों में रहने लगती है। तो अगला शेर है, हिजर की शब मेरी तन्हाई पर दस्तक देगी, तेरी खुशबूएं मेरे खोए हुए ख्वाबों की तरह। यानी जुदाई की रात जब आएगी तो तेरी याद भी आएगी, ठीक वैसे ही जैसे कोई पुराना ख्वाब अचानक दिल में लौट आया हो। और शायद यही इश्क की सबसे गहरी बात है। इश्क हमेशा साथ रहने का नाम नहीं होता, कभी कभी इश्क बस एक खुशबू बनकर रह जाता है जो वक्त के साथ हल्की तो हो जाती है लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं होती। और यही खूबसूरत एहसास के साथ आज के इश्क शायरानों को हम यही विराम देते हैं। मैं हूँ इश्क वाली गीत, आप सुन रहे हैं इश्क बाजी।

0: 89.6 FM
1: कुछ हटके
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं।
1: कुछ हटके
3: आप सुन रहे हैं आरजे गीत को इश्क बाजिया में ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ

वैसे इस गाने में आप किशोर दा की आवाज को फील कर रहे होंगे, लेकिन ये जो आवाज है ये एआई की आवाज है, किशोर दा की आवाज नहीं है। लेकिन है, जहां एआई के कुछ जो ड्रॉबैक्स हैं वहां कुछ फायदे भी हैं कि हम इन नए गानों को उस पुराने एहसास में जी पा रहे हैं। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और अब सेगमेंट जो शुरू होने वाला है रेट्रो इश्क, जहां ऐसी ही एक मोहब्बत की कहानी के बारे में बात करेंगे जिसकी कहानी भले ही पूरी नहीं हुई हो लेकिन उस मोहब्बत ने कमाल किया है। तो चलिए रेट्रो इश्क में आज फिर चलते हैं, उसी मोहब्बत की गहराई को महसूस करते हैं। और ये खूबसूरत सी मोहब्बत है किशोर दा और मधुबाला की, जहां हंसी सिर्फ एक मुखौटा थी, अंदर कहीं एक टूटा हुआ इंसान था। कहते हैं ना कि कुछ मोहब्बतें बड़ा शोर मचाती हैं और कुछ चुपचाप किसी दिल के कोने में बस जाती हैं। और आज रेट्रो इश्क में उसी मोहब्बत के बारे में बात होगी जिसे हंसी में लपेटा गया मगर आंसू से सींचा गया, किशोरदा और मधुबाला की मोहब्बत। अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली जी।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3 R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: क्या कहा?

बहुत ही खूबसूरत सा गाना है और ये गाना है किशोर दा और लता जी की आवाज में। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। और रेट्रो इश्क के इस खास से सेगमेंट में हम आज बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। एक दौर था जब मधुबाला बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत अदाकारा मानी जाती थी, मुस्कुराहट उनकी पहचान थी और चेहरे पर एक ऐसा नूर था जैसे पर्दे पर बस चांद उतर आया हो। और दूसरी तरफ थे हमारे किशोरदा, बॉलीवुड का सबसे चुलबुला बिंदास और थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा सा आवाज का जादूगर। जब दोनों पहली बार मिले तो एक स्टार और एक स्टैंड अप सिंगर की मुलाकात हुई, लेकिन ये मुलाकात मोहब्बत में कैसे बदल गई? दो लोग जो एक दूसरे से बिल्कुल ही ऑपोजिट थे, उनको कैसे प्यार हुआ? इसके बारे में बात होगी, लेकिन अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां और मैं हूं आपकी इश्क वाली गीत।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

रवि साहब की आवाज में है ये गाना और फिल्म हम किसी से कम नहीं जो आई थी 1977 में, और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है। शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत, और हम बात करने वाले हैं किशोर दा और मधुबाला की मोहब्बत के बारे में। दो ऐसे नाम जिनका जिक्र किए बगैर हिंदी सिनेमा के बारे में बात करना शायद बेईमानी है। एक एक्टिंग वर्ल्ड की सुपरस्टार थी तो दूसरा संगीत जगत के बादशाह। इन दोनों को जिंदगी में सब कुछ मिला, लेकिन इनके प्यार की कहानी का जिस तरह से अंत हुआ वो आज भी आपकी आंखें भिगो देगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये दोनों कैसे करीब आए, इनको कैसे मोहब्बत हुई। लोग अक्सर कहते हैं कि मोहब्बत के लिए वक्त चाहिए, पर कुछ मोहब्बतें पहली नजर में ही दिल पर दस्तक दे देती हैं। मधुबाला जो उस वक्त दिलीप साहब की मोहब्बत में थी और अपना दिल जो है वो भी तोड़ चुकी थी, और तभी किशोर दा उनकी जिंदगी में आते हैं एक हंसी का मरहम बनकर। मधुबाला अपने करियर में पीक पर थी जब उन्हें पता चला कि उनके दिल में छेद है और वो विदेश चली गई अपना इलाज कराने के लिए। और इस वक्त ये दोनों साथ में थे, यानी कि किशोर दा और मधुबाला साथ में थे, लेकिन जब किशोर दा को उनका पता चलता है तो उस वक्त वो बहुत भावुक हो जाते हैं और उन्हें सीधा शादी के लिए प्रपोज कर देते हैं। और जब कोई इंसान किसी से सच्चा प्यार करता है तो उसके साथ जिंदगी का हर लम्हा बिताने की चाह भी रखता है, फिर चाहे उसमें सुख हो या दुख। ये जानते हुए भी कि मधुबाला की जिंदगी का अंत कभी भी हो सकता है, लेकिन किशोर दा ने हमेशा उनका ख्याल रखा और उनसे शादी करने का फैसला लिया, और उन्हें कभी भी इस फैसले को लेकर पछतावा भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि वो सच्ची मोहब्बत में थे और मधुबाला के साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहते थे। इसके बाद क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगी गाने के बाद। गाना सुनते हैं, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

फिर से स्वागत है, शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत रेट्रो इश्क, जो बहुत ही खूबसूरत सा सेगमेंट है। किशोरदा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं, जहाँ एक ऐसा वक्त आ गया था मधुबाला की जिंदगी में कि किशोरदा ने इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज कर दिया। लेकिन इससे कुछ समय पहले की बात है, जब इनकी बहुत ही एक सुपरहिट मूवी रही जिसका नाम था चलती का नाम गाड़ी। सेट पर मजाक मस्ती और हंसी के बीच धीरे धीरे दोनों की जिंदगी एक दूसरे में घुलने लगी। और जब मधुबाला की जिंदगी में एक ऐसा वक्त आता है जहां ये इनको सीधा शादी के लिए प्रपोज करते हैं, लेकिन मधुबाला का परिवार इस रिश्ते से खुश नहीं था। और यहां जब किशोरदा की बात आई तो उन्होंने अपने सारे एफर्ट्स लगाए इस मोहब्बत को पूरा करने के लिए, और आखिर में उन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया, दोनों की शादी हो जाती है। लेकिन शादी के बाद होता यह है कि किशोरदा की फैमिली मधुबाला को एक्सेप्ट नहीं कर पाती। लेकिन पता है इन दोनों की मोहब्बत की सबसे बड़ी बात क्या थी? इतनी सारी चीजें होने के बाद भी इतनी बड़ी बड़ी बातें इनके रिश्ते पर कभी हावी नहीं हुई। देखो यार, हर कोई ये चाहता है कि जब किसी की जिंदगी का कोई नया चैप्टर शुरू हो तो उनकी फैमिली रहे उनके साथ, बड़ों का आशीर्वाद रहे उनके साथ। हालांकि कभी कभी किसी को ये खुशी नहीं मिल पाती, क्योंकि उनके परिवार उनसे अलग हो जाते हैं जब वो नए रिश्तों में बन जाते हैं। इनको भी अपनी फैमिलीज को पीछे रखना पड़ा, लेकिन इन्होंने अपनी मोहब्बत को पा लिया था उसी एफर्ट्स के साथ। और अभी वक्त है गाने का, गाने के बाद फिर से लौटेंगे। शो है इश्क बाजियां, मैं हूँ इश्क वाली गीत।

0: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
1: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

शो है इश्क बाजियां और मैं हूँ इश्क वाली गीत। किशोर दा और मधुबाला के बारे में बातें चल रही हैं और बहुत ही इमोशनल सी इन दोनों की स्टोरी है। अच्छा, जब किसी की शादी होती है और शादी में बहुत सारी कस्में खाई जाती हैं कि वो एक दूसरे का साथ देंगे जिंदगी भर, चाहे सुख हो या दुख। खैर, आज के टाइम में ये बातें जो हैं वो बहुत ही बेमानी सी लगती हैं। शायद प्यार के मायने बदल गए हैं आजकल, शायद वो पहले वाली शिद्दत नहीं रही है। लेकिन किशोर दा की अगर मैं बात करूं, जिन्होंने अपनी हर कस्म को निभाया, मधुबाला को सबसे अच्छा इलाज उन्होंने कराया, लेकिन उनकी हालत जो है वो बीतते दिन बिगड़ती ही जा रही थी। इतना सब चल रहा था इनके साथ, लेकिन किशोर दा की मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। जीवन साथी बनने पर लोग कसम खाते हैं कि वो हर सुख दुख में एक दूसरे का साथ देंगे, और इस बात को किशोर दा ने करके दिखाया। उन्हें पहले से मधुबाला की सिचुएशन के बारे में पता था, लेकिन फिर भी उन्होंने उनसे शादी की और आखिरी सांस तक उनका ख्याल रखा। ये जो प्यार की कहानी है ना, ये हमें यही सिखाती है कि सुख दुख में अपने साथी के साथ खड़े रहने का मतलब क्या होता है। और आई थिंक आप इनके प्यार की कहानी को समझ ही गए होंगे। एक ऐसा चेहरा जो हमेशा हमें मुस्कुराता दिखा, लेकिन अपनी जिंदगी में कितना कुछ झेल रहा था हमारे किशोर दा। और अभी वक्त है गाने का। गाने के बाद फिर से लौटूंगी बहुत ही खास सा सेगमेंट लेकर। तब तक आप ये गाना सुनिए।

0: चल अर्जुन शुरू हो जा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
0: अर्जुन नहीं होता अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
0: इरशाद
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
0: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा।
1: सबका ये सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
0: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
0: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता है।
0: अरे यार वो तो मैं कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो। अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो।

पल पल दिल के पास। और इसी गाने के साथ स्वागत है फिर से, शो है इश्कबाजियां और दिल दिया गल्ला लेकर हाजिर हूँ। दिल दिया गल्ला में आपके दिलों की जो बातें हैं वो आप तक पहुंचानी है, और एक बहुत ही खास से टॉपिक के साथ मैं आई हूँ। इश्कबाजियां शो है, और कई बार लोग रिश्तों में आ जाते हैं, बड़े बड़े रिश्ते बना लेते हैं, काफी सारे वादे कर लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप नहीं हो पाती है। और लोग कहते हैं कि क्या ऐसा हो रहा है जो रिश्ता मजबूत नहीं हो पा रहा है, रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो शायद इस बात के पीछे ना एक बहुत बड़ा रीजन होता है कि आप अपने रिश्ते को ना गहराई से नहीं समझ पाते हैं। आप समझते हैं सामने वाले को, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपको समझना चाहिए। और अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि किस तरह से आप अपने रिश्ते को समझ सकते हैं, सामने वाले की रेस्पेक्ट कर सकते हैं ताकि आपका रिश्ता और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए। इसी बारे में बातें होंगी आज दिल दिया गल्ला में। फिलहाल वक्त है गाने का, शो इश्कबाजियां, और गाना है फिल्म हमारी अधूरी कहानी से।

0: सड़क सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना के हैं तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
2: साइबर ठगी से बचने के लिए अपनाएं कुछ सरल उपाय।
3: किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ फोन कॉल पर OTP, UPI, पिन कोड और CVV शेयर ना करें। ATM बूथ से पैसे निकालते समय अनजान व्यक्ति की मदद ना लें।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
4: बच्चों को स्कूल से लाने में लेट हो जाती, इसीलिए रेड लाइट जंप करी।
5: बारिश तेज होने से पहले घर पहुंच जाऊं, बस इसीलिए गाड़ी तेज चला रहा था।
6: मेरा घर तो यही पास में है, इसलिए रॉन्ग साइड से जा रहा हूं। और अंकल, मेरी तो साइकिल है, कोई गाड़ी थोड़ी है।
1: रेडियो महारानी पूछता है, अपनी और दूसरों की जान खतरे में डालने का आपके पास क्या बहाना है? तो ट्रैफिक रूल्स की रिस्पेक्ट करो, तो ना एक्सीडेंट होगा और ना ट्रैफिक की परेशानी। FM 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

छोड़ पाते हैं उन रिश्तों को और ना ही रह पाते हैं। और कई बातों में लोग पहले ही समझ जाते हैं, लेकिन कई रिश्तों में लोग आगे बढ़ जाते हैं और ऐसा रिश्ता टूटना लाजमी है। लेकिन क्या करना चाहिए उस टूटते हुए रिश्ते को बचाने के लिए? ऐसे में रिश्ते को गहराई से आपको बहुत जरूरी है जानना। कोई इंसान आपके लायक है या नहीं, आप कुछ बातों पर गौर करके ये पता लगा सकते हैं। तो वो कौन सी बातें होने वाली हैं जिन पर आपको गौर करना है? और सबसे पहली बात पता है क्या है? जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि रिश्ते में भले ही प्यार कम हो जाए, कैर कम हो जाए, लेकिन रिस्पेक्ट कम नहीं होनी चाहिए यार। तो इसलिए रिश्ते में ना रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, और हर किसी रिश्ते में रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। लेकिन आपके मन में अपने पार्टनर और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए अगर सम्मान है, इज्जत है, तो आपका रिश्ता ताउम्र चल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ख्याल रखिए कि क्या सामने वाला आपकी इज्जत करता है दिल से। आप तो कर रहे हैं, आप तो पूरे एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन क्या सामने वाले की तरफ से भी वो एफर्ट्स है या नहीं है? और अगर है तो आप समझिए उसे, और इस तरह समझकर आप अपने रिश्ते को बेहतरीन साबित कर सकते हैं। फिलहाल वक्त है गाने का, चलिए सुनते हैं इस गाने को। फिल्म भाग मिल्खा भाग से है गाना, बगैर तेरी किए सुनते हैं इस ट्रैक को।

बातें आहिस्ता हैं और इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है पंकज उदास की आवाज में है बहुत ही खूबसूरत सा गाना और आहिस्ता कीजिए बातें। सेगमेंट है दिल दियां गल्लां और बातें चल रही हैं कि किसी भी रिश्ते को गहराई से कैसे समझा जाए। कहते हैं कि हर रिश्ते की नींव होती है विश्वास। कोई रिश्ता तभी मजबूत हो सकता है जब एक दूसरे पर आपको पूरी तरह से यकीन हो। अपने रिश्ते को हेल्दी बनाने के लिए और गहराई से जानने के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना बहुत जरूरी है और ये भरोसा ही वो होता है जो एक स्पेशल बॉन्ड बनाता है। तो इसीलिए आप अपने पार्टनर पर, आप जिससे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उस पर भरोसा बनाए रखिए। और अगर सामने वाला आप पर भरोसा करता है ना दिल से, तो आप उसके भरोसे को कभी ना तोड़े, क्योंकि ये ट्रस्ट अगर एक बार टूट गया तो जुड़े नहीं जुड़ता है यार। क्योंकि कहा ना, हर रिश्ते की नींव होती है यकीन। और इस तरह से आप किसी को गहराई से जान सकते हैं। फिलहाल वक्त गाने का है, शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली की।

0: ए भाई डर देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी

ऐ काश कि हम होश में आने ना पाए। इसी गाने के साथ फिर से स्वागत है शो इश्क बाजियां, मैं हूं इश्क वाली गीत, और सेगमेंट है दिल दियां गल्ला। बातें चल रही हैं कि कैसे अपने रिश्ते को गहराई से जाने। कहते हैं कि जब किसी से प्यार होता है तो उस पर आप पूरा अधिकार जमा सकते हैं, लेकिन अधिकार तो जमा रहे हैं आप, लेकिन इसके साथ साथ ये भी जान लीजिएगा कि अधिकार के चक्कर में कहीं आप उसकी आजादी तो नहीं छीन रहे। जिससे भी आप प्यार करते हैं उसे आजादी देना बहुत जरूरी है। अगर वो आपका है तो आप भले ही उसे कितनी आजादी दे दीजिए, वो हमेशा आपका ही रहेगा, हमेशा आपके पास ही लौटेगा। तो इसीलिए रिश्ते में ना आजादी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप उसकी आजादी छीन लेते हैं तो यकीनन उस रिश्ते का अंत हो ही जाता है एक दिन। और साथ ही साथ एक कम्युनिकेशन गैप होता है ना, उसको भी आप फिल कर सकते हैं, और इस तरह से आप अपने पार्टनर को गहराई से जान सकते हैं, रिश्ते को गहराई से जान सकते हैं। और अपनी बातों को मैं विराम दूंगी क्योंकि समय सीमा समाप्त हो गई है, और मैं ऐसे ही खास से टॉपिक के साथ आपसे मिलने वाली हूं। लेकिन अभी दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो महारानी 89.6 FM, कुछ हटके खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्यार बांटते रहिए।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी पर एंटरटेनमेंट का डोज अभी बाकी है मेरे दोस्त। तेरी बातों में उलझा जिया, बैठे ही
1: बैठे मैंने दिल खो दिया। कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। क्या हम सब बदल गए हैं? इतना बदल गए हैं कि किसी की सांसें हमारी जिंदगी में कोई मायने ही नहीं रखती।
1: हमें तो बस किसी भी कीमत पर अपनी मंजिल तक पहुंचना है, पर क्या वो कीमत एम्बुलेंस में फंसी एक जान भी हो सकती है?
0: ऐसा मत कीजिए, क्योंकि आपके चंद पलों की देरी किसी की ठहरती जिंदगी में जान डाल सकती है। इसीलिए एम्बुलेंस का सायरन सुनकर हमें अपनी मंजिल से ज्यादा किसी की जिंदगी की कीमत समझनी चाहिए।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कहती
1: कुड़ी मैनू कहती।
2: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
3: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
4: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। एक तेज हॉर्न के ट्रैफिक में सन्नाटा सा कर गई जब एम्बुलेंस के हॉर्न की आवाज कानों में पड़ गई। आज फिर एक जिंदगी इस ट्रैफिक में अपनी सांसों के लिए लड़ रही है जनाब। एम्बुलेंस को रास्ता देकर आप पूरा कर सकते हैं लाखों जिंदगियों के जीने का ख्वाब, क्योंकि एक छोटी सी मदद किसी की जिंदगी को बचा सकती है।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, डीजे वाले बाबू मेरा गाना चला दो, गाना चला दो, गाना चला।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच है बोली में थोड़ा रियान ही टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ बी ए डी शाह नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 एफएम द्वारा जनहित में जारी।
2: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
3: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
2: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
3: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई, अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
4: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
5: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।

0: शुरू आजा।
1: हाँ तो शुरू होते हैं और अर्ज करते हैं।
2: अर्ज नहीं होता, अर्ज अर्ज।
1: शायरी पे ध्यान लगाओ।
2: इरशाद।
1: रोडवेज बस जैसा अपना हाल है यारों।
2: मेरा नहीं तुम्हारा ही होगा,
1: सबका ही है। सब कुछ टूटा फूटा है फिर भी अपना रुतबा है यारों।
2: ये बात तो सही है।
1: और बस की याद आती है जब भी लाइफ में कुछ समझ नहीं पाता हूँ।
2: कैसे कैसे?
1: कंडक्टर बोलता है आगे बढ़ो तो मैं मोटिवेट हो जाता।
2: अरे यार वो तुम्हें कह रहा था कि मुंह उठाकर बस से उतरो और आगे बढ़ो, अब तुम बोलते रहो मैं तो चली गई, मेरी बस आ गई।
1: सुनो सुनो, हेलो।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना ना भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम। कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी ज़ीब्रा क्रॉसिंग से।
1: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
0: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चले, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
1: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
3: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
4: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बने। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: मोरने

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

फिर भी जहाँ से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पूरे दिल में लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे मुंह बंद रख, आंखें जो कहती है कहने दे, बहुत रुकी है।

0: झुमका लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: Oh my god! Special offer! Get XYZ brand clothes worth ₹5,999 and just ₹599! Click on the link now.
1: ठहरो जरा, रुको जरा, ऑनलाइन खरीदारी में रखो थोड़ी समझदारी। सुरक्षित वेबसाइट से करो अपनी खरीदारी, फर्जी वेबसाइट से बचो, साइबर अपराधियों के जाल से बचो, वरना होगी बहुत परेशानी।
2: रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: Life on Wheels, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं। मैं हूं एम्बुलेंस, हर रोज एक जीने की उम्मीद मेरे दामन में आती है। कुछ को मिल जाती हैं सांसें यहां, कुछ दम घुट कर रह जाती हैं। इस ट्रैफिक के शोर में बहुत सी सांसें थम जाती हैं। दो रास्ता मुझे निकलने का, क्योंकि बहुत सी जिंदगियां आगे के लम्हे जीना चाहती हैं।
1: ट्रैफिक में फंसी हुई एम्बुलेंस को रास्ता देकर अपना फर्ज निभाएं और लाइफ ऑन व्हील्स कैंपेन का हिस्सा बनें। रेडियो महारानी 89.6 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: अरे अरे रुक जाओ जरा, कैलेंडर चेक किया क्या आज? क्योंकि आज की तारीख सिर्फ डेट नहीं, फुल ऑन फिल्मी अपडेट है बॉस। कभी इसी दिन किसी हीरो ने एंट्री मारी थी ऐसे कि पूरा थिएटर सीटी मार उठा था।
1: मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिश।
0: और कभी किसी ने प्यार का ऐसा सीन दिया कि लोगों ने बारिश का वेट ही करना शुरू कर दिया।
2: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है।
0: और कभी किसी ने ऐसा स्टाइल मारा कि आज तक वो उस टाइम का ट्रेंड बन गया।
2: आवारा हूँ, आवारा हूँ।
0: समझे या और समझाऊं? ये तारीख सिंपल नहीं है, ये तो फुल ऑन फिल्मी गोल्ड माइन है। तो सुनने के लिए सिनेमा का स्वैग, सुनना न भूले सिनेमा का कैलेंडर विद आरजे मोनिक, ओनली ऑन रेडियो महारानी 89.6 एफएम, कुछ हटके।
3: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, ये स्टेशन रेडियो महारानी है।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: save life. पर सेव वाटर सेव सिनेमैटिक वाइब. अगर पानी नहीं होता तो बॉलीवुड के कितने गाने अधूरे रह जाते. जैक और रोज आज भी टाइटैनिक घुमा रहे होते. वीरू किसकी टंकी पर चढ़ के मौसी को मनाता. और ये गाना कभी नहीं बन पाता. रेडियो महारानी 89.6 देता है पानी बचाने का सबसे स्ट्रॉन्ग बहाना. जल है तो एंटरटेनमेंट का कल है. रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी.
1: ओ करम खुदाया है, ओ करम.

हकीकत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ हटके

0: मैं यमराज तुम्हें लेने आया हूँ।
1: ओ पाजी, तुसी भी हेलमेट पाया हुए?
0: ओए खोत्या, ये मुकुट है, पर तूने हेलमेट पहना होता तो मुझे यहाँ नहीं आना पड़ता।
2: हर साल 52,000 से भी ज्यादा लोग सिर्फ हेलमेट ना पहनने की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। इसीलिए इन हजारों में नहीं लाखों में एक बने नो हेलमेट तो नो टू व्हीलर सवारी। 89.6 FM रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। जोरों से भागती दुनिया में बेहिसाब पाना और खोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। थक गई हूँ भागते भागते खुद से, अब माँ की गोद में सर रख के सोना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। खेलते हैं लोग यहाँ सिर्फ दिल से, अब टूटा उनका ये खिलौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है। नापते हैं ये मुझे वक्त के हिसाब से, जो दिया वक्त तो आधा चौथाई पौना है। बड़ा ना करे जिंदगी, मुझे फिर से बच्चा होना है।

हर को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6 FM। कुछ

0: I hate water wasting रे, जा जाके टंकी बंद कर।
1: सावधान, पानी की टंकी भर गई है, कृपया मोटर बंद कीजिए।
2: रिड्यूस, रीयूज, रीसाइकिल, यही है वो RRR जिन्हें फॉलो करके हमारा शहर एनवायरनमेंट से ऑस्कर जीत सकता है। पर ये 3R आखिर है क्या? रेडियो महारानी आपको आसान भाषा में समझाता है। रिड्यूस यानी प्लास्टिक से बनी चीजों का कम से कम इस्तेमाल, रीयूज यानी जो दोबारा काम आ सके सिर्फ उसी प्लास्टिक का इस्तेमाल, रिसाइकिल यानी वेस्ट प्लास्टिक को फेंकने के लिए सिर्फ ब्लू डस्टबिन का इस्तेमाल।
3: FM 89.6 का रेजोल्यूशन यही है कि सिंगल यूज प्लास्टिक अब ऑप्शन में ही नहीं है।
4: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।

0: ए भाई दर्द देख के चलो।
1: फिल्म मेरा नाम जोकर का ये गाना इशारा करता है कि सड़क नियम सिर्फ गाड़ी चलाने वालों के लिए नहीं है बल्कि पैदल चलने वालों के लिए भी है। इसीलिए राइट लेफ्ट राइट देखकर ही रोड पार करें, वो भी जीब्रा क्रॉसिंग से।
0: आगे ही नहीं पीछे भी, दाएं ही नहीं बाएं भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी।
1: सड़क के किनारे हमेशा अपने सीधे हाथ की तरफ चलें, वो भी बिना फोन इस्तेमाल किए हुए, ताकि आपके परिवार को कभी इस फिल्म का दूसरा गाना न गाना पड़े।
0: जाने कहां गए वो दिन।
2: रेडियो महारानी 89.6 द्वारा जनहित में जारी।
3: पुष्पा, I hate water wasting रे, जा जाके टंकी।

0: सुरक्षा नियमों को अगर अपनाओगे तो खुद के साथ साथ दूसरों की भी जान बचाओगे, क्योंकि दुर्घटना की है तीन यार, नशा, नींद और रफ्तार।
1: सदा सुरक्षित रहो। अरूर सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 एफएम कुछ हटके।
2: बोरियत को याद दिला दे उसकी नानी। आप सुन रहे हैं फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी
3: 89.6 एफएम कुछ हटके।

0: मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ।
1: अभी भी टाइम है बेटा जी, गाड़ी में फ्यूल और सड़क किनारे कूड़ा जलाना छोड़ दे।
2: A few moments later,
0: माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है।
1: बेटा जी, जितना जल्दी निकालोगे सॉल्यूशन, उतना ही कम होगा पॉल्यूशन। रेडियो महारानी द्वारा की गई ये इको फ्रेंडली घोषणा, ताकि इस प्लेनेट पर हम देख पाएं अपना ब्राइट फ्यूचर।

0: 89.6 FM.
1: कुछ छक्के
2: आप अपनी एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं
3: कुछ हटके।

0: जिंदगी का सफर कितना भी हसीन हो, एक गलती और सब खत्म।
1: ये सड़कें तुम्हारी कहानियाँ नहीं सुनती, इन्हें सिर्फ तुम्हारी समझदारी दिखती है। इसलिए हाई स्पीड में गाड़ी चलाने से पहले एक बार जरूर सोचे, आपको किसी न्यूज़पेपर के पेज की हाईलाइट बनना है या अपनी खुद की कहानी का राइटर।
2: आपकी सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके। रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
4: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: OTP शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
0: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: कबीर ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, फोन की स्क्रीन भले ही छोटी है पर उसने जिंदगी के सबसे बड़े पल छुपा लिए हैं।

0: मंजिल सिर्फ उन्हीं को मिलती है जो सफर की कद्र करते हैं। कभी कभी एक छोटी सी लापरवाही पूरी कहानी बदल देती है। हेलमेट कोई बोझ नहीं, यह आपकी समझदारी का सबसे बड़ा सबूत है।
1: तो अगली बार सफर पर निकलने से पहले इस छोटी सी समझदारी को अपने सिर पर जरूर रखिए, क्योंकि आपकी एक सावधानी लिखेगी आपकी जिंदगी की कहानी। सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है, और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, जिंदगी हर दिन एक नया सवाल पूछती है और हर बार तुम्हारा जवाब होना चाहिए मैं रेडी हूँ। हिम्मत रखो, हर दिन कुछ बढ़िया होने वाला है क्योंकि ये दुनिया तुम्हारी है, बस खुद पे यकीन रखो।

0: ज्यादा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, ज्यादा चिल्लाने से बात समझाई नहीं जाती, सिर्फ दिल दूर हो जाते हैं। इसलिए आज से ही आवाज़ धीमी और बात गहरी, फिर देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत लगती है।

0: ये है रेडियो महारानी का क्विक रिमाइंडर।
1: डियर आप, कभी किसी के आंसुओं का मजाक मत बनाओ।
2: जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय।
1: थोड़ा समझो, थोड़ा सुनो, क्योंकि आपका एक प्यारा सा शब्द उनके लिए सब कुछ बदल सकता है। इसलिए रेडियो महारानी कहता है, दिल की सुनो, दिल से जियो।

0: हर शाम जब तुम घर लौटते हो, माँ की नजरें दरवाजे पर टिकी रहती है। पापा के सवालों में सख्ती से ज्यादा फिक्र होती है और छोटे भाई की वो मुस्कान जो सिर्फ तुम्हें देखकर खिल उठती है। सोचो अगर कभी ये मुस्कान इंतजार में ही रह जाए।
1: सफर लंबा हो या छोटा, हेलमेट पहने, हाई स्पीड में गाड़ी ना चलाएं और अपनों की हंसी को बचाएं। हेलमेट सिर्फ आपकी सुरक्षा नहीं, अपनों की खुशियों की गारंटी है।
2: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।
3: हरियाणवी गानों की मस्ती में झूमना सा है तो सुनो फरीदाबाद का अपना रेडियो महारानी 89.6।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
2: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था, वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: सा सादा है।
1: बोलो बोलो।
0: अजी लेना एक वादा है।
1: क्या?
0: आजा आजा शादी का इरादा है।
1: क्या?
0: शादी का इरादा है।
1: शादी
0: का इरादा है।
1: शादी ना पापा ना।
0: मगर क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो मोना, सुनो तो, सुनो तो। आप यहाँ आए इसलिए, आपने बुलाया इसलिए, आए हैं तो काम भी बताइए, पहले जरा आप मुस्कुराइए, पहले जरा आप

0: इसलिए।
1: अच्छा आए हैं तो काम भी बताइए,
0: पहले जरा आप मुस्कुराइए।
1: मुस्कुराने की न कोई बात है,
0: ऊँची देखिए तो क्या हसीन रात है।

0: पहले जरा आप मुस्कुराई
1: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
2: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
1: पर महंगा हेलमेट, थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
2: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
3: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
4: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही।
1: यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
2: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
3: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: अरे भाई, इतनी तेज रफ्तार में कहाँ जा रहा है?
1: भाई मैं तो लंबी रेस का घोड़ा हूँ, रफ्तार से ही जाऊंगा।
0: अरे भाई रुक तो जा, धीरे चलेगा तो दूर तक जाएगा, वरना हॉस्पिटल के बिल ही भरता रह जाएगा।
2: सड़क पर चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान, किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
3: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर

0: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
1: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।
2: अच्छा है, अच्छा है। रेडियो महारानी कुछ हटके, कुछ हटके। रेडियो महारानी
3: कुछ हटके। मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं

बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलूं, चाहे कली से प्यार।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चालान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं। बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: मुराया मारे गिल को मुराया उड़े तारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े
1: मुराया मारे गिल को मुराया उड़े तारा पड़सी उल्टा बोले बटर सिरा कूड़े।

0: और सुनो।
1: जिनके कान संगीत सुनना पसंद करते हैं वो रेडियो महारानी 89.6 के अलावा और कुछ नहीं सुनते हैं।
0: अरे रफ्ता रफ्ता देखो आप मेरी लड़ी है। अरे बाजू।

0: जिंदगी है
1: भाई, क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है। बोलो
0: सौ बातों की एक बात यही है,
1: क्या भला तो क्या बुरा, कामयाबी में जिंदगी है।

0: चलना यूं ही साथी।
1: ओए बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की,
0: हिल मिल के चलना यूं ही साथी।
1: और बंधी मुट्ठी लाख की और खुली तो प्यारे खाक की।

0: जो समझाए उसी की मची धूम, जो समझाए उसी की मची धूम,
1: जो समझा उसी की मची धूम, जो समझा उसी की मची धूम,
0: बाजू

0: रेडियो महारानी प्रेजेंट्स साइबर सिपाही। यहाँ होगी साइबर क्राइम से जान।
1: ओटीपी शेयर किया तो पैसे गायब, फेक लिंक खोला तो डेटा गायब, इसीलिए बेवजह एप्स डाउनलोड मत करो।
2: साइबर दुनिया है साहब, पहले डिजिटली सेफ रहो। फिशिंग, हैकिंग या हो आइडेंटिटी थेफ्ट, साइबर सेफ्टी है जरूरी, वरना हो सकता है स्कैम का इफेक्ट।

0: पीजा सरकार
1: कहना था कि मैंने शराब छोड़ दी है।
2: ओह नो,
0: मैंने तो सुना था आप दिन रात शराब में मदहोश रहते हैं।
1: रहता था, आजकल बगैर शराब के मदहोश रहना सीख लिया, नजरों से देखा।

0: चलते वक्त स्पीड का रखें खास ध्यान। किसी भी लापरवाही से मत बनिए हॉस्पिटल के मेहमान, क्योंकि आपकी सुरक्षा है आपकी जिम्मेदारी।
1: रेडियो महारानी द्वारा जनहित में जारी।

0: लाइफ ऑन व्हील्स, जहां जिंदगी है वहां हम हैं।
1: व्हील्स ऑफ लाइफ, व्हील्स ऑफ होप, एम्बुलेंस जो उम्मीद की किरण लाती है और जिंदगी को बचाती है। इसीलिए जब भी सड़क पर चलती हुई एम्बुलेंस को देखें, उसे सबसे पहले रास्ता दें।

0: पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है।
1: अरे ओ सांबा, कौन सा रेडियो चैनल सुनता है रे?
2: सरदार रेडियो महारानी 89.6 FM।

0: सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी।
1: वो खिड़की पर बैठी आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है रोज की तरह, लेकिन कहीं उसका इंतजार इंतजार ही न रह जाए।
0: सफर पर निकलने से पहले बस एक छोटी सी चीज मत भूलिए, हेलमेट। आपकी एक सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बदल सकती है।

0: हाँ तो अर्ज किया है।
1: ओहो, अर्ज होता है अर्ज।
0: कर रहे हैं आप, सुनो तो
1: इरशाद।
0: स्कैम कॉल करने वालों का फोन हमारे नंबर पर आ गया।
1: तुम्हारे नंबर पे?
0: हाँ जी।
1: अच्छा,
0: और उन्होंने पूछा क्या?
1: क्या पूछा?
0: हाँ, पैसे दे दो वरना कार ठोकने के जुर्म में आपका बेटा जेल जाएगा, उन्होंने ये बताया।
1: क्या बात कर रहे हो?
0: हाँ, हमने कहा भाई सिंगल हूँ मैं, ना तो मेरा कोई बेटा है ना मेरी कोई कार है।
1: अच्छा,
0: हमारी लाइफ में खटारा जी साइकिल है, वो भी बेकार है।
1: बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओ पागल, तुम्हें कहना चाहिए था वो भी उधार ली हुई है।
0: नहीं नहीं, रेंट पे है, ईएमआई पे।
1: खैर, अब तुम बोलते रहो, हम सबको बता कर आते हैं कि स्कैम कॉल्स को वैसे ही इग्नोर करें जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हारी कॉल को करती है।
0: इज्जत का फालूदा कर दिया यार।
1: बाय।
0: सुनो तो, कहाँ चली?
1: बाय।

0: कबीर, ये हेलमेट तो बस चलान से बचने के लिए है, कोई भी सस्ता सा ले लेते हैं, काम तो वही करेगा।
1: सस्ता हेलमेट और महंगा खतरा, भाई हेलमेट सिर के लिए होता है, सिर्फ कानून के लिए नहीं। जो जिंदगी को बचाए वो कोई समझौता थोड़ी होता है।
0: पर महंगा हेलमेट थोड़ा ज्यादा खर्चा नहीं हो जाएगा?
1: ये हेलमेट महंगा है लेकिन मेरी जिंदगी से ज्यादा नहीं, बाइक रिपेयर हो जाएगी पर लाइफ नहीं। और भाई अगर सही हेलमेट से एक भी जान बच जाए तो कीमत क्या वाकई ज्यादा है?
2: हेलमेट वही चुनो जो आपकी जिंदगी बचाए, ना कि आपकी जिंदगी उसकी कीमत चुकाए।
3: सदा सुरक्षित रहो। अ रोड सेफ्टी कैंपेन बाय रेडियो महारानी 89.6 FM कुछ हटके।

0: सुन रहे हैं कृष्ण वाणी।
1: श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। और जैसे सर्दी के बाद गर्मी और गर्मी के बाद वर्षा ऋतु, ऐसे ही चलता रहता है। इस प्रकार संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है।